रेडियो वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 मई सन 2026 सुबह के 5:55 और

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे बाबला मेहता, अनुराधा पोडवाल, जगजीत सिंह और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचार।
1: खुदा पर विश्वास हर धर्म की बुनियादी कल्पना है। हर धर्म की यही शिक्षा है और मनुष्य की प्रकृति में ये बात मौजूद है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मतभेद के बावजूद किसी को संदेह नहीं। कर्म

0: अपने भटकाव की आखिरी सीमा दुराचार है और विश्वास मार्ग से भटकना ही नास्तिकता है। इसलिए दुराचार और नास्तिकता का कोई प्रकार ऐसा नहीं था जिससे अपना जीवन खाली रहा हो, और दुराचार स्वयं भी पूर्ण रूप से नास्तिकता है। दुनिया किसी के लिए कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर तुम स्वयं बदल जाओ तो उसको भी बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए युवावस्था में तो ऐसी न थी जैसी अब बुढ़ापे में नजर आ रही है। मिलन की शाम में यही रोज़ वाली दुनिया कितनी रोमांचकारी लगती थी, अब विरह की सुबह में वो बात कहाँ। विधाता की एक अनजानी शक्ति कब से अपनी ओर खींच रही थी, परंतु भुलावे की दुर्बलता ने दामन थाम रखा था। सत्य की ज्योति कब से आवरण उठा चुकी थी, परंतु अपनी ही अनुचित दृष्टि का पर्दा रुकावट बना हुआ था। कृपा करने के लिए अदृश्य स्वयं पुकार रहा था, परंतु मन वासनाओं के झमेलों में खोया हुआ था। इश्क की असफलताओं ने अंतिम चोट की तो अनायास ही आंखें खुल गईं। देखा तो एक दूसरे ही संसार का आकर्षण सामने था। न वो आसमान था, न वो जमीन, न वो संसार था, न वो वासना। जिस हाथ ने यहाँ तक पथ प्रदर्शन किया था, स्वयं उसको भी ढूंढा तो पता न था। मानो वो एक दीपक था कि जब तक रात के अंधियारे में चलते रहे, वो पथ प्रदर्शक बना रहा। जब भोर हो गई तो आवश्यकता न थी, बुझा दिया गया। आँखों का तो ये हाल था, कान लगाए तो अंदर और बाहर हर ओर एक ही आवाज उठ रही थी। वही दुनिया जिसमें अपने आप को भूलकर अपने हर जलवे से आँखों को, अपने हर नगमे से कानों को मस्ती के निरंतर निमंत्रण दिए, अब उसका कोना कोना चप्पा चप्पा होशियारी और दूरदृष्टि का आगार था। कण कण को बोलते हुए महसूस किया, पत्ते पत्ते पर कोई संदेश अंकित देखा। फूलों ने जबान खोली, पत्थरों ने उठ उठ कर संकेत किए, धूल ने उड़ उड़ कर मोती बरसाए। आसमानों को बार बार उतरना पड़ा कि सवालों का जवाब दें। धरती को कई बार उछलना पड़ा कि आकाश के तारे तोड़ लाए। फरिश्तों ने बाजू थामे कि कहीं पाँव न लड़खड़ाएं। सूरज चिराग लेकर आया कि कहीं ठोकर न लग जाए। सब ने आवरण उतार फेंके, सारे पर्दे छलनी हो गए। सबकी आंखों में कहानियां थीं, रात जैसे खो गई। अंधकार की खोज की मगर न मिला। निद्रा का पता पूछा तो किसी ने न बताया। सोया उत्साह जाग उठा और दिल फिर नई शक्ति और प्रेरणा के साथ वापस आ गया। इस जीते जागते संसार में जो कुछ है, उनमें से कोई भी न था जिसकी भ्रिकुटी पर तेवर या नयनों में चंचलता हो। सबकी जवानी बोलती हुई, सबके संकेत स्पष्ट, सबकी रेखाएं उभरी हुई थीं। न कोई होठ बंद रहा, न कोई प्रकाश छिपा रहा। आँखों और कानों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ, दिल की व्यापकता ने सबको समेट लिया।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे जायद में कद्दू कुल की सब्जियां विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर आप सुन सकेंगे चर्म रोग का होम्योपैथी उपचार विषय पर डॉक्टर सोनिया प्रीत कौर की वार्ता।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर तबस्सुम सलीम के गाए कुछ लोकगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे गजेंद्र सिंह के का ख्याल गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग अहीर भैरव। कार्यक्रम आज के कलाकार में 11:00 आज के कलाकार रहेंगे फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। 11:30 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज का विषय रहेगा स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलों से खाद्य आत्मनिर्भरता अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुना जा सकेगा 12:00।

हमारी बहनी सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार दोपहर 1:15 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा पौधों को दी पोषण। इसी के साथ सुनिएगा ईंधन से की बचत घर से विषय पर वार्ताकार सदफ की वार्ता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे तलत अजीज की गाई चंद गजलें। दोपहर 3 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक वैशाली शर्मा रहेंगी और प्रस्तुतकर्ता रहेंगे अनिंद्र सिंह। श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5, जिसमें 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा की जाएगी पारिस्थितिकी संहार विषय पर। इसी के साथ आप सुनेंगे अतुलनीय भारत सेगमेंट में पवित्र उपवन के विषय में और जानेगा स्वस्थ धरा से ही है स्वस्थ जीवन हेल्थ प्लस सेगमेंट में। इसी के साथ आप सुन सकेंगे चेतना आर्या की वार्ता, जिसका विषय रहेगा पर्यावरण का पोषक वृक्षारोपण। ग्रामीण लोक कार्यक्रम में शाम 6 चर्चा के विषय रहेंगे पीएम कुसुम योजना और दूसरा विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसी के अतिरिक्त आप सुन सकेंगे खाद्य सुरक्षा में पादप स्वास्थ्य की भूमिका विषय पर डॉ. कौशल यादव की वार्ता। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा वनस्पति जगत और हमारी पृथ्वी। इसी के साथ सुनेगा बढ़ता तापमान जिम्मेदार कौन विषय पर डॉ. राकेश कुमार सिंह की वार्ता। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है जैव विविधता, वार्ताकार रहेंगे डॉ. नितिन कुमार। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं ए. हरिहरन और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं।

बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे हरिहरन और संगीतकार थे सतीश भाटिया। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं जायद में कद्दू कुल की सब्जियां विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
1: हमारे देश की जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, अतः हमारे आहार में सब्जियों का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा सब्जियों में अनिवार्य प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वसा और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कच्ची सब्जियां पकी हुई सब्जियों की अपेक्षा अधिक गुणकारी होती हैं। इस समय की सब्जियां सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाती हैं, क्योंकि इस समय दूसरे अन्य मुख्य फसलों का अभाव होता है। हमारा देश सब्जी उगाने में चीन के बाद संसार में दूसरे नंबर पर आता है।

जबकि प्रति व्यक्ति सब्जी का सेवन बहुत कम है। भोजन में पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को अपने संतुलित भोजन के लिए 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 ग्राम सब्जियों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। सब्जियों को वैज्ञानिक तरीके से उगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं, जिससे अधिक आय प्राप्त हो सकती है। गर्मी के मौसम में प्राप्त होने वाली सब्जियां सर्दी समाप्त होने तथा गर्मी प्रारंभ होने के पूर्व बसंत ऋतु में उगाई जाती हैं। ये सब्जियां खेत खाली होने पर फरवरी से मार्च तक लगा देना चाहिए। गर्मी के मौसम में उगने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों में अधिकतर बेल वाली सब्जियां आती हैं, जिनमें लौकी, चपन कद्दू, टिंडा, करेला, सीताफल, तोरई तथा बहुत सारी बेल वाली सब्जियां हैं। किसान भाई अच्छी उपज लेने के लिए उचित किस्मों का चयन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाने के लिए दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। खेत की अच्छी प्रकार जुताई करके खरपतवार रहित बनाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 4 व 5 जुताई देसी हल से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे बीज तथा प्रमाणित बीज का होना अति आवश्यक है। प्रमाणित बीज कृषक भाइयों को राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, उद्यान विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों तथा नई दिल्ली पूसा से प्राप्त किए जा सकते हैं। घिया, तोरई, करेला, टिंडा को बोने से पहले 24 घंटे पहले भिगो लेना चाहिए तथा बुवाई से पहले बीज को किसी फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 2 ग्राम कैप्टान या थीरम को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों को उठी हुई क्यारियों में नालियों के किनारे पर बोया जाता है, जिससे बेल व फल सूखी पर रहें तथा जड़ों को नालियों से पानी मिलता रहे। ऐसा करने से अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। नालियाँ पूरब से पश्चिम दिशा में बनानी चाहिए। नालियाँ 2 से 3 मीटर के अंतर पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी तथा 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। एक स्थान पर 2 बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोने चाहिए। 4 पत्तियां आने पर एक स्वस्थ पौधा छोड़ते हुए बाकी सभी पौधों को निकाल देना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों की जातियों के विषय में कृषक भाइयों को विशेष ध्यान रखना जरूरी है तथा वह जातियां अपनानी चाहिए जो बाजार में आसानी से प्राप्त हो सकें तथा पैदावार की दृष्टि से उत्तम हो। लौकी की पेशा पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, अर्काबहार जातियां सबसे उत्तम रहती हैं। तोरई की कल्याणपुर चिकनी, पूसा नस्तार जातियां अच्छी हैं। करेला में प्रिया, अर्का हरित, कोयम्बटूर लौंग जातियां पैदावार की दृष्टि से सबसे उत्तम हैं तथा यह बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां का बीज 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए। एक एकड़ खेत के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में 1 महीने बाद और फल आने के समय डालना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों से शीघ्र फसल लेने तथा एक ही खेत में अतिरिक्त फसल लेने की दृष्टि से सब्जियों की नर्सरी पॉलीथीन की थैली में तैयार करना चाहिए। पॉलीथीन थैली में जनवरी माह में बुवाई करनी चाहिए। इस तरीके से फसल लेने के

0: लिए 15 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी थैली उपयुक्त रहती है। लिफाफे के नीचे 2 से 3 छेद कर देने चाहिए। थैली के अंदर मिट्टी वह सड़ी गोबर की खाद की बराबर मात्रा थैली में भर देनी चाहिए तथा फुब्बारे से सिंचाई करनी चाहिए। 30-40 दिन बाद पौधों की खेत में रुपाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों में 4-5 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए तथा खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। अक्सर यह देखने में आता है कि खेत में फूल ही फूल नजर आते हैं, परंतु फल बहुत कम लगते हैं। इसका कारण यह होता है कि पौधों में नर फूलों की संख्या मादा फूलों से काफी अधिक होती है। पौधों पर मादा फूलों की संख्या अधिक होने पर फल अधिक लगते हैं। मादा फूलों की संख्या अधिक लाने के लिए 3 से 4 पत्तियों वाली अवस्था होने पर मौलिक हाइड्रोजाइट की 5 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करके लाभ मिलता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी तथा लाल कीड़े का प्रकोप अधिक होता है। फल मक्खी फलों के नीचे अंडे देती है। अंडों से कीट निकलकर फलों के अंदर घुसकर फल खाते हैं तथा फल सड़ने लगते हैं। लाल कीड़ा पत्तियों को खाता है जिससे काफ़ी हानि होती है। बचाव के लिए मेलाथियोन 50 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव करना लाभकारी रहता है। गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों के फल नरम व मुलायम अवस्था में तोड़ना चाहिए। कद्दू के फल कच्चे अथवा पके दोनों अवस्था में तोड़े जाते हैं। फलों की तुड़ाई सुबह करनी चाहिए तथा फलों को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इस प्रकार खेती करने से लौकी 150 से 300 कुंटल, कद्दू 250 से 300 कुंटल, तोरई 100 से 125 कुंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकती है तथा अन्य सब्जियों की भी पैदावार होती है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करने से किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे जायद में कद्दू कुल की सब्जियां विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: वार्ताः पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17-2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 3-2 पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष

0: को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।

त्वचा रोग। त्वचा रोग या चर्म रोग आज के मौजूदा जीवन में पाए जाने वाली मुख्य परेशानियों में से एक है। मुख्य रूप से चर्म रोग के दो कारण हैं, एंडोजेनिक भाव, अंदरूनी फैक्टर जिसमें एलर्जी और त्वचा परेशानियां अनुवांशिक होती हैं, जैसे आर्टिकेरिया, एलर्जिक रिनाइटिस इत्यादि, ये आमतौर पर क्रॉनिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा कारण है एक्सोजेनिक फैक्टर, मतलब बाहरी तत्वों के कारण पाई जाने वाली बीमारियां, जैसे किसी बाहरी संक्रामक तत्वों के सीधे संपर्क से या नाक या मुंह के द्वारा इन जीवाणुओं के सांस नली और भोजन नली से भीतर पर होता है। ये मुख्य तौर पर अचानक और निश्चित तौर पर निश्चित समय तक रहती हैं। त्वचा के मुख्य रोगों में एक्जिमा, आर्टिकेरिया यानी पित्ती, डर्मेटाइटिस, दांत खुजली, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, फोड़े फिंसी और कील मुहासे आदि मुख्य हैं। इसके मुख्य लक्षणों में खुजली, जो कि आमतौर पर सामान्य से लेकर लाल चकत्ते पड़ने तक हो सकती है, त्वचा का लाल पड़ना, सूजन का पाया जाना और दाने

0: डर्मेटाइटिस, दांत खुजली, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, फोड़े फिंसी और कील मुहासे आदि मुख्य हैं। इसके मुख्य लक्षणों में खुजली, जो कि आमतौर पर सामान्य से लेकर लाल चकत्ते पड़ने तक हो सकती है, त्वचा का लाल पड़ना, सूजन का पाया जाना और दाने इत्यादि निकल आना, त्वचा में मवाद भरे फोड़े कील आदि निकल आना, त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा पड़ना या उसमें दरारें पड़ जानी, त्वचा में जलन महसूस होना भी इसके मुख्य लक्षणों में एक है। त्वचा का सुन पड़ना, जैसे कि किसी भी वस्तु के छूने से एहसास का खत्म होना, जो कि कुष्ठ रोग के शुरुआती दौर में देखा जा सकता है। गंभीर स्थिति में त्वचा काली भी पड़ सकती है। त्वचा रोग के अन्य कारणों में लंबे समय तक लगातार रोग प्रतिरोधक दवाओं के सेवन से त्वचा रोग हो सकता है। स्टेरॉइड्स और नशे वाली दवाओं के लगातार सेवन करने से भी त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ज्यादा मीठा, चिकनाई और मसाले युक्त भोजन खाने से भी त्वचा रोगों में परेशानी आ सकती है। लगातार मानसिक तनाव भी इसका एक कारण हो सकता है। इन्फेक्शन, खास तौर पर फंगल इन्फेक्शन के कारण भी त्वचा रोग पाए जाते हैं। साफ सफाई में कमी होना, सौंदर्य प्रसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से भी त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इत्यादि के लगातार सेवन से त्वचा में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जिनमें कि त्वचा का कैंसर तक हो सकता है। इन सब से बचने के लिए सीधी धूप से त्वचा को बचा कर रखना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन अच्छी क्वालिटी के और कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना साबुन, तौलिया, कंघी आदि सब अलग होना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए किसी भी रोगी की देखभाल करने पर उसके सीधे संपर्क से बचें। इसके लिए हाथों में दस्ताने पहनकर काम करना चाहिए। हमेशा सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। भोजन में दूध, सब्जी, दालें, साबुत अनाज इत्यादि ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए। मछली, अंडे और मांस से परहेज करना चाहिए। क्षतिग्रस्त भाग को साबुन से नहीं धोना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी एंटीसेप्टिक लोशन या सिर्फ सादा साफ पानी से धोना चाहिए। ऊपर से क्रीम, लोशन और तेल लगाने से त्वचा रोग ठीक न होकर दब जाते हैं। इसके लिए उचित दवा से ही इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथिक में इसका सही निदान पूर्ण रूप से संभव है। इसके लिए बिटर स्वीट, बारबेरी, पफ बाल, सिलिकेट ऑफ लाइम, ब्रिमस्टोन, प्योर सिलिशिया, व्हाइट सिडार, फ्लाई फंगस, एसिड नाइट्रिकम जैसी रासायनिक दवाएं लेने से लाभ मिल सकता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चर्म रोग का होम्योपैथी उपचार विषय पर डॉक्टर सोनिया प्रीत कौर की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशकांत।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से

0: क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
2: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जुड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GK

0: ओटीपी पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
1: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारे और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
3: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो, जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए।

0: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार।

सुबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे पीआरओ ने बताया कि सुबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण मान्य नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्म तिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य किए जाएंगे। बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद में होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

मुंबई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही हैं। प्यारों ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी। आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन की फेरे बढ़े। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों की फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ के अनुसार कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरई से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होंगी।

आज आंधी बारिश, कल से फिर बढ़ने लगेगा तापमान। ताजनगरी में मंगलवार को आंधी और बारिश से हल्की राहत मिल सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। 17 मई तक दिन का तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस आसपास तक पहुंच सकता है। सोमवार को सुबह से तेज धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम होकर रह गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी 0.1 डिग्री कम होकर 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

ताजमहल में प्रवेश करने से पहले फ्लिप गेट से गुजरना होगा। ताजमहल में सुरक्षा और फर्जी टिकटों से एंट्री बचाने के लिए फ्लिप गेट लगाए जाने की तैयारी है। ये गेट 90 डिग्री पर घूमने वाले होंगे। अंदर और बाहर की तरफ खुलने वाले ये गेट टर्न स्टाइल

बेटों के स्थान पर लगाए जाएंगे। ताजमहल में भीड़ नियंत्रण को लेकर कवायद हो रही है। इसके लिए प्रवेश द्वारों पर लगे टर्न स्टाइल गेटों को हटाकर फ्लिप गेटों को लगाए जाने पर विचार चल रहा है। इन गेटों के लगने से पर्यटक एक एक कर प्रवेश ले सकेगा। इससे प्रवेश द्वारों से पर्यटकों को प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। टर्न स्टाइल गेट को भी धक्का देकर घुमाना पड़ता है, जबकि फ्लिप गेट में सेंसर लगा होगा जो अपने आप खुलेगा बंद हो जाएगा। वर्ष 2019 में ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेटों पर टर्न स्टाइल गेट लगाए गए थे। कुछ महीने पहले इन गेटों से फर्जी टिकटों से एंट्री के मामले सामने आए। इस पर अब फ्लिप गेटों को लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। फ्लिप गेट मेट्रो और एयरपोर्ट पर लगे होते हैं, उसी तर्ज पर ताजमहल में भी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इन गेटों से ऑटोमेटिक कंट्रोल भीड़ नियंत्रित हो सकेगी। टिकट वैध होने पर ही गेट खुलता है, गलत टिकट पर प्रवेश नहीं मिलता। एक समय में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा, जिससे धक्का मुक्की कम होगी। बिना टिकट या संदिग्ध प्रवेश पर रोक लग सकेगी। कितने लोग अंदर गए, किस समय गए, उसका डेटा भी रहेगा। तेज एंट्री सिस्टम लंबी लाइनों को कम करने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों पर दबाव कम होगा और टिकट चेकिंग ज्यादा पारदर्शी होगी। ऑनलाइन टिकट स्कैन होते ही सत्यापन हो जाएगा। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक व्यवस्था मिलने से अनुभव बेहतर होगा।

भारतीय सेना में 10वीं पास युवा करें आवेदन। भारतीय सेना में सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 के 119 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर भर लें। अब आवेदन पत्र और दस्तावेजों को स्कैन कर नोटिफिकेशन में दी गई ईमेल आईडी पर भेज दें। आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों की 100 प्रमाणित फोटोकॉपी को डाक से भी भेजना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। इसके लिए योग्यता है 10वीं पास या समकक्ष योग्यता हो। प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज को संभालने का न्यूनतम 6 माह का कार्य अनुभव हो। आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 31 मई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदन शुल्क देय नहीं है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट और साक्षात्कार क्वालिफाइंग होगा। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आधिकारिक वेबसाइट www.indianarmy.nic.in इस ईमेल आईडी पर भेजें। आवेदन sunshine.rise@nic.in यहां पर किया जा सकता है। हार्ड कॉपी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पंजी गोवा 403001 पर। पता एक बार से फिर सुन लीजिए। द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पंजी गोवा 403001।

नर्सिंग के छात्रों को मिलेगा कोर्स पूरा कराने का मौका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के उन छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जो सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल होने के कारण अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे। विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्र छात्राओं को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सप्लीमेंट्री परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक

के अनुसार सत्र 2019-20 और 2020-21 बैच के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के वे छात्र जो सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे अब अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। उसके अनुसार ये अवसर केवल उन्हीं बैच के छात्रों के लिए है जिन्होंने सप्लीमेंट्री परीक्षा पास न कर पाने के कारण अपनी डिग्री अधूरी छोड़ दी थी। ऐसे में प्राचार्य इस सूचना से सभी संबंधित छात्रों को तुरंत बता दें ताकि छात्र आवेदन कर सकें, क्योंकि इसके बाद फिर से परीक्षा नहीं कराई जाएगी।

16 से होंगी BAMS के छात्रों की परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में BAMS चतुर्थ प्रोफेशनल की मुख्य और पूरक परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार वर्ष 2020-21 बैच की मुख्य परीक्षा और 2015-20 तक के विभिन्न बैचों की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 16 मई से प्रारंभ होंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के मध्य आयोजित की जाएंगी। इसके लिए खंडारी स्थित यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर को नोडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 16 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेंगी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने

0: भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है।

0: है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
5: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
3: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
6: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
3: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक

0: का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से

0: हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त तो पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ज़र मुबादला बचाने के लिए अवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाही कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
0: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
1: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
0: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉ हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकरूरी के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके

0: बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ है जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमित असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: ईरान के मुतालिबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों की बजाय जंग के हालात और इक्तसादी सूरतहाल पर मबनी है जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इक्तसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिजाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के RTO जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे

0: मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमत गैर कानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के टाउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाकई हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं, जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तहत हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉ AKM वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वह 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि VVG रामजी एक्ट मुल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर आवाम से जर मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक को फिल्म दो लफ्जों की कहानी में। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत था अरमान मलिक का। आइए अब सुनते हैं रूप कुमार राठौर, मुर्तजा और कबीर के स्वर में फिल्म अनवर का ये गीत। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत से सजाया है मिथुन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, जयेश गांधी और जसपिंदर नरोला के स्वर में फिल्म अपने का ये गीत। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आप सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में फिल्म तुम बिन से। फैज अनवर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है निखिल विनय ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारे ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गयी है। जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना

0: कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेन सिंह लोधी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक सुना। विधायक वीरेन सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण हैं वो हैं बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत से यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
4: सन 62 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ, 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 17 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर था तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है उस परिवार।

0: लिए हम कुछ कर पाए।
1: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक समनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती देहमाफी कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से ADG कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुशेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत, जिसे आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत था एसटी आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत। संतोष आनंद की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म हंसते जख्म से। कैफी आजमी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोता, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर तबस्सुम सलीम के गायक कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर तबस्सुम सलीम के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मधुमेह 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में हमने फिल्म ओम शांति ओम से लिया है। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर को फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में। जयदीप सहनी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण के स्वर में फिल्म देवदास का एक गीत। नुसरत बदर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग का ये गीत, जिसे गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और अजय के स्वर में फिल्म धड़क का ये गीत। संगीत है अजय अतुल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और कुणाल गांजानवाला के स्वर में फिल्म संवरिया का एक गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था मोंटी ने, और इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गजेंद्र सिंह का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग अहीर भैरव। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी आभा चौहान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज अपने इस कार्यक्रम में हम जिन कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं वे हैं फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। श्रोताओं, यूं तो बॉलीवुड में कई विलेन आए और गए, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर कभी गए नहीं, बल्कि अपने फैंस की यादों में अमिट छाप छोड़ गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम, शोहरत और रुतबा कमाने के बावजूद थिएटर में उनकी सांस बसती थी। लोगों की भलाई के लिए अनगिनत एनजीओ के लिए काम भी करते रहे। 80 के दशक में बॉलीवुड पर इनका राज चलता था। बिना इनके नेगेटिव रोल्स के फिल्म अधूरी मानी जाती थी। फिर चाहे वो फिल्म सड़क में महारानी बनकर लोगों की रूह कपा देना हो या फिर अर्ध सत्य में रामा शेट्टी के किरदार में जान फूंक देना हो। तो मित्रों, आज हम महान कलाकार सदाशिव अमरापुरकर के बारे में आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उनकी एक फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई सन 1950 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जो कि अब अहमदनगर नाम से जाना जाता है, में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी और समाजसेवी थे। उनके छोटे भाई नीलकंठ अमरापुरकर भी एक व्यापारी हैं। श्रोताओ, सदाशिव ने अपने स्कूली दिनों में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। पुणे विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के दौरान भी वे रंगमंच से जुड़े रहे। मित्रों, अमरापुरकर जी ने मराठी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अंततः लगभग 50 नाटकों में अभिनय और निर्देशन का काम किया। फिर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने 22 जून सन 1897 में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका के साथ फिल्म जगत में पदार्पण किया, जो एक मराठी ऐतिहासिक फिल्म थी। उन्होंने रंगमंच और फिल्म जगत में अनेक पुरस्कार जीते। उनकी पहली हिंदी फिल्म 1983 में आई अर्धसत्य थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, हरियाणवी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। सन 1993 में उन्हें खलनायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म जगत में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के बारे में। मित्रों, फिल्म अर्धसत्य के बाद सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, जवानी और खामोश में अभिनय किया। वर्ष 1986 में उन्होंने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म आखिरी रास्ता में एक खलनायक की भूमिका निभाई। सन 1987 में उन्होंने धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म हुकूमत में एक मुख्य खलनायक के रूप में अभिनय किया, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म मिस्टर इंडिया से भी अधिक कमाई की। 1988 में वे फिल्म मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, कालचक्र, ईश्वर, ऐलाने जंग, फरिश्ते, वीरुदादा, नाकाबंदी और बेगुना जैसी कई फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं में दिखाई दिए। इसके बाद सन 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने फिल्म आंखें, इश्क, कुली नंबर वन, गुप्त द हिडन ट्रुथ, आंटी नंबर वन, जय हिंद, मास्टर और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों से सहायक भूमिका

भूमिकाओं और हास्य भूमिकाओं की ओर रुख किया। उन्होंने सन 1996 की फिल्म छोटे सरकार में डॉक्टर खन्ना की एक यादगार भूमिका निभाई, जिसके अलावा उन्होंने कदाचित वास्तुपुरुष, दोघी, सावर खेड़ एक गांव और आरा आरा आबा अतातारी थंबा जैसी मराठी फिल्मों में कई शानदार भूमिकाएं निभाई। उनकी आखिरी फिल्म स्क्रीन भूमिका एक लघु फिल्म बॉम्बे टॉकीज में कैमियो की थी।

श्रोताओ, सदाशिव अमरापुरकर एक बेहद परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता थे और कई सामाजिक संगठनों जैसे सामाजिक कृतज्ञता निधि, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, स्नेहालय, लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ, अहमदनगर ऐतिहासिक वास्तु संग्रहालय और कई अन्य से जुड़े हुए थे। उनके मन में हमेशा ग्रामीण युवाओं के लिए नरम स्थान था और वे उनके विकास के लिए प्रयासरत रहते थे। मित्रों, एक उत्साही पाठक और मराठी व हिंदी पुस्तकों के संरक्षक होने के नाते उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सामाजिक मुद्दों पर कई लेख लिखे। इसके अलावा किमायगार और अभिनयाचे सहापत जैसी पुस्तकें भी प्रकाशित की। उनकी स्मृति में अहमदनगर स्थित थिंक ग्लोबल फाउंडेशन ने स्वर्गीय सदाशिव अमरापुरकर पुरस्कार देना भी शुरू किया, जो थोड़े ही समय में बहुत लोकप्रिय हो गया। वर्ष 2016 में मराठी लेखक और आईटी विशेषज्ञ अच्युत गोडबोले और सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखिका दीपा देशमुख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को भी अभिनेता विक्रम गोखले के हाथों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रोताओ, अमरापुरकर को अक्टूबर 2014 में फेफड़ों में सूजन हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर हो गई और 64 वर्ष की आयु में 3 नवंबर सन 2014 में एक महान अभिनेता ने इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह दिया।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम कुछ आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारा विषय है स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलों से खाद्य आत्मनिर्भरता। श्रोताओं, एक कहावत है कि खाली पेट कोई भी सेना आगे नहीं बढ़ सकती। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ही इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा था। और सत्य तो यही है कि खाद्य पदार्थों से लेकर रक्षा उपकरणों तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विज्ञान और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य आत्मनिर्भरता पर का मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज का उत्पाद स्वदेश में ही करना होगा, उसकी भी कीमत चुकानी होगी, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है उन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्राप्त करना जिसमें हमें किसी वस्तु से अधिक लाभ प्राप्त करना शामिल नहीं होता है। तो श्रोताओं, इस विषय पर आज हम आपसे विस्तार से बातें करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आनंद लेंगे गीत और संगीत का। तो क्यों ना सबसे पहले ये गीत सुन लिया जाए।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलों से खाद्य आत्मनिर्भरता विषय पर। श्रोताओं, स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलों के माध्यम से खाद्य आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी घरेलू उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर रहना। यह खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू है जो आयात पर निर्भरता कम करके राष्ट्र को मजबूत, विकसित और खाद्य अधिशेष वाला देश बनाता है।

मित्रों, खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादक मिट्टी और जल प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों जैसे कि जैविक खेती, फसल चक्र और संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग उत्पादन में वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे देश की हरित क्रांति में देखा गया। साथ ही सिंचाई प्रणालियों में सुधार, यांत्रिकीकरण और ड्रोन या सेंसर जैसी नई तकनीक का उपयोग करना भी आवश्यक है, जो कि उत्पादन लागत को कम करके उत्पादकता को बढ़ाता है। स्थानीय उत्पादन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उपजाऊ फसलों का उत्पादन करने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होती है, बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी सुरक्षित होती है। इसके अलावा खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए केवल एक फसल चक्र पर निर्भर न रहकर विभिन्न प्रकार की पौष्टिक फसलों की खेती करना चाहिए, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होने के साथ साथ स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

श्रोताओं, खाद्य आत्मनिर्भर देश होने से विदेशी मुद्रा की बचत तो होती ही है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर उत्पादित न होने वाले अन्य उत्पादों को खरीदने में किया जा सकता है। साथ ही ये देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अप्रत्याशित घटनाओं और कृषि सामग्री की कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तनों से भी बचाता है। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहे। श्रोताओं, हमारे देश में 1960 के दशक में हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में ऐतिहासिक बदलाव किए थे, जिससे भारत औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, किसानों की आय में वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ। हालांकि रासायनिक पदार्थों के भारी उपयोग से मिट्टी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, इसीलिए अब सांस्कृतिक और औद्योगिक कृषि की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

श्रोताओं, खाद्य आत्मनिर्भरता में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसान ही देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

श्रोताओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे किसान ही देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और इसीलिए सरकार को चाहिए कि किसानों को कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करें और जैविक कृषि को बढ़ावा दें। मित्रों, स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलें किसी भी राष्ट्र की खाद्य आत्मनिर्भरता का आधार होती हैं। यदि देश के किसान पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकें तो वे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। मित्रों, खाद्य आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश की आवश्यकताओं के अनुसार भोजन का उत्पादन स्वयं करना और बाहरी देशों पर उद्यम को कम करना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में स्वस्थ एवं उपजाऊ फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि स्वस्थ फसलें केवल अधिक उत्पादन ही नहीं देती बल्कि पोषण, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करती हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को यहीं संपन्न करने की अपने रेडियो साथी अभा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कैसे रखें अपना ख्याल।

0: इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
0: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
0: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
0: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
0: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
1: जी,
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
1: जी,
0: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी,
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी,
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी,
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी,
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहनें, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से,
3: माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से,
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर

0: साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
1: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
1: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
0: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह

0: कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
1: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
0: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
1: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
3: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
6: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
6: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड।

यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं।

0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी,

0: संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

शफाकत अमानत अली और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रावण का ये गीत। गीत को लिखा था कुमार ने, संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में हनीफ शेख की शब्द रचना को, जिसकी धुन भी हनीफ शेख ने बनाई है। फिल्म का नाम है मिकी वायरस।

शान और माँ लक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म शादी का लड्डू का ये गीत। गीत को लिखा था विशाल ददलानी ने, संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम नई तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म MS धोनी का ये गीत। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीतबद्ध किया है अरमान मलिक ने।

शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म का नाम था जब वी मेट। श्रोताओं, कार्यक्रम नई तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में समीर की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

नई तरह ने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से साथ निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में यह जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुज़रा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुज़रा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इस्लाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर

मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाज़ तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वज़ीर आज़म की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरीरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक्किद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर इज़िला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट

0: में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बहनों, मैं हूं आज के कार्यक्रम की होस्ट अर्चना और आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से जिसका विषय है पौधों को दें पोषण। बहनों, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी अच्छे विकास के लिए सही पोषण की जरूरत है। बहनों, हम अक्सर अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में घर के आसपास पौधे तो लगा देते हैं पर ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप पौधे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कभी कभी पौधे मर भी जाते हैं। बहनों, इसका कारण है पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि पौधों को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन जो पत्तियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के लिए जरूरी है, इसी प्रकार पोटाश पौधों की समग्र मजबूती के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा धूप, पानी, हवा की सही मात्रा का भी हमें ध्यान रखना होता है। बहनों, पौधों का विकास उनकी जड़ों से शुरू होता है, तो यदि जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो पौधे को स्वस्थ रखने के लिए ये सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि मिट्टी स्वस्थ हो, और मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए खाद बहुत जरूरी है। बहनों, यदि ये खाद रासायनिक की जगह प्राकृतिक हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बहनों, ये प्राकृतिक खाद हम अपनी रसोई से निकलने वाले किचन वेस्ट यानी फलों व सब्जियों के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती आदि से आसानी से घर में ही बना सकते हैं। लेकिन कैसे, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं। तो चलिए जानते हैं घर पर ही खाद तैयार करने का तरीका हमारी आज की मेहमान डॉक्टर मनिंदर कौर जी से, जो कि कॉमर्स की प्रोफेसर होने के साथ साथ प्रकृति से जुड़कर भी कार्य करती हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। लेकिन बहनों, हम मनिंदर जी से बात करें उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: जैविक खाद बनाने का कार्य करते हैं। हम तीन तरीके बनाते हैं, जिसमें होम कंपोस्टिंग, घर में जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है ग्रीन वेस्ट, उसको खाद में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दूसरा, मंदिरों से जो फूल मालाएं निकलती हैं, जो अमूमन हम लोग यमुना में प्रवाहित कर देते हैं, उनको खाद को खाद के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। और तीसरा, जो पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं, वो कैसे हम न जलाकर उसको खाद में परिवर्तित करें। तीसरा, हम प्लांटेशन करते हैं, पेड़ लगाने का कार्य करते हैं। और तीसरा, जल के लिए जल बचाओ अभियान के तहत हम कार्य कर रहे हैं।
1: आपको इस प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: प्रेरणा तो आप ये समझिए कि एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी दीदी अंजू दयालानी जी जो इस संस्था की सचिव हैं, तो हमें लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ कमाना और अपना परिवार चलाना ही नहीं है, और भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए समाज के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमें मिल गया है।
1: तो मनिंदर जी, आप हमें ये बताइए कि आप जैविक खाद कैसे तैयार करती हैं और क्या ये आसानी से घर में ही तैयार की जा सकती है?
0: ये आसानी से घर में तैयार की जा सकती है। और हम होम कंपोस्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है अर्चना जी, एक आपको बाल्टी लेनी है, उस बाल्टी के में एक नल लगा हुआ होना चाहिए, और एक जो है हम एक वो देते हैं कल्चर देते हैं, एक और बुरादा देते हैं लकड़ी का, जिसमें हम कल्चर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो उसको हम अगर कहें तो बोकाशी एक नाम दिया गया है, थोड़ा सा हमने नीचे, अगर वो आपके पास पाउडर नहीं है तो थोड़ी मिट्टी डालिए, या आपके गार्डन में सूखी पत्तियां हैं वो रख दीजिए। फिर जो आपका पूरे दिन भर का जो किचन वेस्ट निकलता है, जिसमें फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती, गत्ता, कागज, जो भी चीजें निकलती हैं, उसको आप रात को सोने से पहले उसमें डाल दीजिए बाल्टी में, और ढक के रख दीजिए एक कोने में। और फिर दूसरे दिन भी आपको ऐसे ही करना है, या तो मुट्ठी आपको मिट्टी की डालनी है, या पत्तियां डालनी है, या फिर हमारे द्वारा जो बनाया गया एक बोकाशी पाउडर है उसे डालना है, और फिर आपने ऐसे ही किचन वेस्ट उसमें रात को रख दिया। ये प्रक्रिया जब तक वो भर नहीं जाए चलती रहती है भरने तक, और बीच बीच में हमें ये काम करना है कि हर 8 दिन बाद जब कचरा डीकम्पोज होने लगता है तो उसमें से पानी निकलता है
1: जी,
0: क्योंकि सब्जियों और फलों के छिलकों में पानी होता है, तो वो जब डीकम्पोज होता है तो पानी निकलता है, पानी को हमें निकालना है। और क्योंकि अगर पानी हम नहीं निकालेंगे तो वो स्मेल देने लगेगा, वो पानी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, वो अपने आप में एक लिक्विड खाद है, मगर वो कम क्वांटिटी में हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि 2 ढक्कन हमने दिया और 2 लीटर पानी में हमने उसको डाल के पौधों में डाल दिया, उसको मतलब इतनी वो एसिटिक होती है कि उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब धीरे धीरे हम पानी निकालते रहेंगे और जो अंदर जो उसके हमने ग्रीन वेस्ट डाला है, पत्तियां डाली है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ड्राई फॉर्म में आता जाएगा, और एक 40 दिन बाद जो है वो उसको हम फिर क्या करते हैं कि एक पिट ले लेते हैं, या एक कोई गत्ते का काटन होता है उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के और उसको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ऊपर मिट्टी डाल के उसे 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। और 10 दिन बाद जब हम उसे खोलते हैं तो एक चाय पत्ती, जैसे गीली चाय पत्ती होती है, उस फॉर्म में वो खाद हमको तैयार मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपको आगरा नगर निगम की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, आप इसके विषय में कुछ बताइए।
0: जी, संस्था अर्चना जी ये जो हमने शुरू करी थी 2013 में शुरू करी थी, और शुरू में जब हमने इस कार्य को किया तो लोगों ने हमें बहुत इस बात के लिए कहा कि आपने क्या काम शुरू कर लिया है, आप कहीं भी झाड़ू लगाने लग जाती हैं और कचरा इकट्ठा करती रहती हैं पत्तियां। तो हमने कहा कि नहीं, हम इसी कार्य को करेंगे। और 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने जब झाड़ू उठाया तब लोगों ने हमें अप्रिशिएट करना शुरू किया, और आज की तारीख में हम सिर्फ आगरा में नहीं इस कार्य को पूरे यूपी में कर रहे हैं। तो ये सब देते हुए आगरा नगर निगम ने हमें 2015 से लेकर आज तक हर साल नया एक सम्मान देते हैं, और उस सम्मान का हम सम्मान रखना चाहते हैं कि वो जिस आशा के साथ वो हमें दिया जा सकता है उस पर हम खड़े उतरे, और इसीलिए नगर निगम ने हमें स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर।
1: मनिंदर जी, आपके कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और आज आपने हमारी श्रोता बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अर्चना जी।

0: मनिंदा जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार रत्ना जी।
0: मनिंदा जी, इको फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी जिसकी आप अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पर आप कार्य करती हैं पर्यावरण संबंधी, तो किस प्रकार का कार्य है, जरा संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: संस्था के अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य करते हैं, जिसमें हम

0: ये कहाँ से चली?
1: बहनों, अभी हमने जाना डॉक्टर मनिंदर कौर जी से घर में ही खाद बनाने का तरीका। तो चलिए बहनों, अब बात करते हैं कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी। बहनों, एक स्वस्थ जीवन के लिए जितना जरूरी है संतुलित आहार और व्यायाम, उतना ही जरूरी है हमारी नींद का पूरा होना। आज की तनाव भरी जिंदगी में मानसिक परेशानियां, मोबाइल टीवी का अत्यधिक प्रयोग, शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम ज्यादा होना, ये सभी चीजें हमारी नींद को प्रभावित करती हैं। और बहनों, अनिद्रा का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसकी वजह से मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा आना, किसी भी काम में अच्छे से मन ना लगना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो बहनों, मैं तो यही कहूंगी कि आप कितने भी बिजी हों, अपने लिए समय जरूर निकालें, पूरी नींद लें, हल्का फुल्का व्यायाम हमारे अनिद्रा की परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। और हो सके बहनों तो सोने से 2 घंटे पहले सोशल मीडिया से दूरी बना लें। बहनों, जब नींद ना आए तो संगीत का साथ अपनाएं, क्योंकि संगीत हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक प्यारा सा मधुर गीत।

0: बहनों, इस गीत की समाप्ति के साथ ही अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। बहनों, हम बात कर रहे हैं डिजिटल जनगणना की। जनगणना मतलब देश के हर व्यक्ति की गिनती और उसकी जानकारी। बहनों, अब तक ये काम कागजों पर होता था, लेकिन अब जब भारत डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है तो जनगणना भी डिजिटल होगी। इसके कई फायदे होंगे, जैसे समय की बचत, गलतियों का कम होना, आगे चलकर सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले, ये भी सुनिश्चित हो सकेगा। बहनों, डिजिटल जनगणना के लिए डेटा आपके मोबाइल ऐप से निकाला जाएगा, जो कि लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरेंगे, जिसमें हमें सही सही जानकारी देनी है। आपको जो भी डेटा होगा वह गोपनीय रखा जाएगा। यह जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में आवास संबंधी जानकारी ली जाएगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी। यह पोर्टल कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। घर घर आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन होगा। आप इसके नियम भारत सरकार जनगणना पोर्टल देख और पढ़ सकते हैं और अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। बहनों, जब हम अप टू डेट रहने की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। या हम सब जानते हैं कि आजकल हम देश में ईंधन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए व महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी कैसे दे सकती हैं, इसके लिए आइए सुनते हैं एक वार्ता आज की वार्ताकार सदव जी से।
1: जिन पदार्थों को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, तेल और बिजली, ऐसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मनुष्य बहुत से पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से और कृत्रिम ऊर्जा मानव की सहायता से प्राप्त की जाती है। रोजमर्रा के जीवन में हम ईंधन का बहुत प्रयोग करते हैं। बिना ईंधन के प्रयोग किए जीवन यापन करना संभव नहीं है। आजकल हमारे घरों में ऊर्जा के जिस स्रोत का प्रयोग ज्यादा होता है वह है बिजली व LPG। यह दोनों ही हमारी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। घर के प्रत्येक काम को करने में ऊर्जा के रूप में बिजली का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना पकाने के लिए, ताप की अधिकता के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए और कपड़े धोने के लिए। घर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज करने के लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। ईंधन की बचत करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ईंधन का स्रोत इस धरातल पर बहुत सीमित है और बढ़ती जनसंख्या के कारण ईंधन का अभाव बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो घरों से भी ईंधन की काफी हद तक बचत की जा सकती है। जैसे बिजली की बचत हम घरों में इस प्रकार से कर सकते हैं। आमतौर पर जो बल्ब हम घरों में प्रयोग करते हैं उसकी जगह हमें LED बल्ब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि परंपरागत बल्ब की अपेक्षा में LED बल्ब के जलने में कम बिजली खर्च होती है। जितनी ऊर्जा एक परंपरागत बल्ब को जलाने में लगती है उतनी ऊर्जा में कई LED बल्ब जल सकते हैं। वैसे तो LED बल्ब महंगा होता है, लेकिन इसके प्रयोग से ईंधन की बचत हम इसके मूल्य से अधिक कर सकते हैं। सरकार भी इसकी कीमत को कम करने का प्रयास कर रही है। सामान्य बल्ब का प्रकाश आंखों पर बुरा प्रभाव डालता है। LED बल्ब साधारण बल्ब की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन करता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो इसकी बनावट में बहुत ध्यान

0: घर हवादार और प्रकाशमय बनना चाहिए। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो स्विच बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से 10 वॉट प्रति उपकरण ऊर्जा की बचत हो सकती है। यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो लाइट्स, पंखे, फ्रिज, टीवी को बंद कर दें। एसी का इस्तेमाल करते समय दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे तरीके से बंद कर देना चाहिए। घर की खिड़कियों पर पर्दे जरूर लगाएं। रेगुलेटर 25 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में होना चाहिए। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कट ऑफ वाले एसी का प्रयोग करें। सर्दियों में हम लोग ब्लोवर और रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। जब इनका प्रयोग ना कर रहे हों तो इसे बंद कर दें। आमतौर पर लोगों के घरों में फ्रिज दिन रात चलता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रिज के दरवाजे को सही से बंद रखना चाहिए। यदि फ्रीजर की जरूरत ना हो तो बंद कर दें। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस का प्रयोग तभी करें जब कपड़े प्रेस करने हों। अक्सर प्रेस को ऑन करके हम लोग भूल जाते हैं या दूसरा काम करने लगते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कोयले का प्रयोग भी हम घरों में बहुत से कार्यों के लिए करते हैं। कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। कोयला एक बार नष्ट हो जाए तो हम उसे दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला हजारों वर्ष पहले पेड़ पौधों के चट्टानों के अंदर दबने से बना था। कोयले का बनना बहुत लंबी प्रक्रिया है। कोयले का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से बिजली पैदा करने में किया जाता है, इसलिए कोयले का प्रयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कोयले का बचाव करें। एलपीजी का प्रयोग रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एलपीजी एक प्राकृतिक संसाधन है। एलपीजी का अभाव विश्व में बढ़ता जा रहा है। हम लोग एलपीजी का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। एलपीजी का बचाव करना बहुत आवश्यक है। हमें गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर को हमेशा बंद रखना चाहिए। जब जरूरत हो तभी ऑन करें, क्योंकि रेगुलेटर के अनावश्यक खुला रहने पर एलपीजी का रिसाव होता है और एलपीजी गैस व्यर्थ होती है। इस चीज का ध्यान रखें। गीजर का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको गर्म पानी की आवश्यकता हो। पानी गर्म हो जाने के बाद प्लग को बंद करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान देने से लगभग 30% ईंधन की बचत की जा सकती है। रसोई में खाना पकाते समय ईंधन की बचत सरलता से की जा सकती है। गैस या स्टोव के बर्नर की गति मध्यम होनी चाहिए। ज्यादा तेज गति होने पर अनावश्यक ऊर्जा खर्च होती है। खाना पकाने के सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद ही गैस या स्टोव को चलाना चाहिए। खाना पकाने से कुछ समय पहले दाल और चावल को भिगोकर रख देना चाहिए, जिससे ईंधन की काफी बचत हो सकती है। प्रेशर कुकर में एक साथ कई चीजें बना सकते हैं। खाना पकाते समय खाने में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे खाने की पौष्टिकता चली जाती है। ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है। खाने को ढककर बनाना चाहिए। खाने में एक उबाल आने पर बर्नर की गति धीमी कर देनी चाहिए। गहरे बर्तनों के स्थान पर चौड़े मुंह के बर्तनों का प्रयोग करें। अगर स्टोव या गैस के बर्नर से पीले रंग की फ्लेम निकल रही हो तो बर्नर को तुरंत साफ करें और फिर खाना पकाएं। देश के हर एक नागरिक को ईंधन की बचत को लेकर गंभीर होना होगा। ईंधन को बचाना अपना कर्तव्य समझना होगा। हमारे जीवन में ईंधन की महत्ता इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हमें एक दिन भी बिना बिजली के रहना पड़े तो हम कैसे रह सकते हैं। यदि हम आज ईंधन की बचत करते हैं तो वह कल हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। ईंधन की बचत करना देश की समृद्धि का संकेत है। जिस देश में जितना ईंधन की बचत होगी, देश में उतना ही अधिक ईंधन होगा और देश उतना ही अधिक समृद्ध होगा। ईंधन की बचत करने के बहुत से फायदे हैं। ईंधन की बचत से न केवल ईंधन की बल्कि पैसों की भी बचत होती है और प्रदूषण से भी बचाव होता है। अतः देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, ईंधन की बचत करें और भविष्य को बचाएं।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे एक वार्ता। अब समय है अपने कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट परवरिश रिश्ते नाते का। बहनों, कहते हैं जिस घर में बुजुर्गों का साया होता है वहां अनुभव और

अपनापन कभी कम नहीं होता। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी हमारे घर के बुजुर्ग हमारे न चाहते हुए भी नजरअंदाज हो जाते हैं। बहनों, हमारे बड़े बुजुर्ग केवल हमारे परिवार के सदस्य ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन की जड़ें हैं, संस्कार हैं हमारे बच्चों के लिए। वे हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, बस चाहते हैं तो थोड़ा सा मान सम्मान और थोड़ा सा हमारा समय। उनके साथ कुछ पल बात करना, कभी कभी उनसे कुछ सलाह ले लेना, आते जाते उनका हाल चाल पूछ लेना उन्हें खुशियां देता है, और उनकी खुशी लौटकर हमारे घर आंगन में बसकर हमारे घर को खुशहाल बनाती है। बहनों, बुजुर्ग हमारे जीवन की वो किताब हैं जिनके हर पन्ने पर अनुभव लिखा होता है, और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या दुखी होते हैं तो उनके द्वारा बोले गए दो शब्द हमारे लिए दया, दवा और दुआ सबका काम करते हैं। क्योंकि बहनों, हम सभी जानते हैं कि उनका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहनों, आपसे बातें करते करते कब हम कार्यक्रम की समाप्ति तक आ गए पता ही नहीं चला, लेकिन बहनों, हम आपसे विदा लें उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा मधुर गीत।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तलत अजीज की गाई चंद गजलें।

श्रोताओं, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं तलत अजीज की गाई चंद गजलें।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज की गाई चंद गजलें। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, दोपहर के 2 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Rises Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज

0: लता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद

0: गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अकील अहमद खान का राग भैरवी में गायन।

वी में गायन। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हकीकत का ये गीत। गीत को लिखा था कैफी आज़मी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। श्रोताओं का

श्रोताओ, लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म ममता का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था रोशन ने। श्रोताओ, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म तकदीर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का। श्रोताओं, कार्यक्रम की संवादक हैं वैशाली शर्मा, प्रस्तुतकर्ता हैं अनेंद्र सिंह। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में हम करते हैं तहे दिल से आपका स्वागत। आर्ट इज द वॉइस ऑफ सोल, कला आत्मा की आवाज है। और ये भी कहा गया है कि ये एक ऐसी आवाज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। कला सीमाएं नहीं देखती। सदियों से लेकर आज तक कला ने मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का काम किया है, बखूबी किया है। और अगर संगीत की बात करें तो गीतों के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने किसी चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक के लिए आप कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम करते हैं आपका स्वागत कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ और लेते हैं पहली कॉल।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, कैसी हैं मैम आप?
0: जी मैं ठीक हूँ। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैम मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ। मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी बुलंदशहर में आपके केंद्र से जुड़ा हूँ और मुझे आपके केंद्र के प्रोग्राम काफी पसंद आ रहे हैं मैम।
0: इमरान शेख जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: मैम अभी मैंने आपके जो किसानों के कार्यक्रम आते हैं शाम 5 बजे से जो शुरू होते हैं युवाणी के कार्यक्रम, अभी वो सुनना शुरू किए हैं और भी कई सारे प्रोग्रामों में मैं भाग ले रहा हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी ध्यान से और इतनी लगन से कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपना कोई बहुत पसंदीदा कार्यक्रम बताएं और क्यों आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो।
1: बिल्कुल मैं जरूर बताना चाहूंगा मैम। एक आपके यहाँ से प्रोग्राम आते हैं मैम, शालिनी जी ने एक प्रोग्राम पेश किया था मैम, उसमें आस्थमा के ऊपर एक बीमारी पर चर्चा की थी, वो काफी पसंद मुझे प्रोग्राम आया मैम
0: जी।
1: तो इसी तरह के जो गजलों के प्रोग्राम है मैम ये भी सुनता हूँ। सुगम संगीत है, सभी प्रोग्राम में धीरे धीरे सुन रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपके केंद्र से नया जुड़ा हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आप नए जुड़े हैं और इसके बाद आपका जुड़ाव इतना बढ़ता जा रहा है और आप इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इमरान जी इसी तरह से आप बने रहिएगा आगे भी आकाशवाणी आगरा के साथ। फिलहाल आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी आगरा की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं और काफी मेहनत करते हैं।
0: शुक्रिया इमरान हाशमी जी। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि श्रोता है तभी हम हैं और हम हैं तभी बहुत सारी हमारी जो टीम है, मतलब हम लोगों का एक दूसरे के प्रति ही आत्मविश्वास जो है एक दूसरे को देखकर ही बढ़ता है। और जब आप जैसे श्रोता हमें कार्यक्रम में फोन करके अपनी पसंद बताते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं तो हम चाहते हैं कि और भी अच्छे कार्यक्रम आपके सामने ला सके।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम आज मैं राज मूवी का गाना सुनना चाहूंगा
0: जी,
1: जो कि गाने के बोल हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे।
0: आपके प्यार में, अलका याग्निक जी की आवाज है ये
1: जी। मैम एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, सोहिल नाम है उनका, वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मेरे साथ में
0: जी।
1: और मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा ये सॉन्ग।
0: ठीक है इमरान जी, हम आपकी पसंद को जरूर शामिल करते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम
0: जी। शुक्रिया।

0: आपका
1: मैं
0: स्वागत
1: मोहम्मद
0: है।
1: सुहेल बात कर रहा हूँ काशीपुर उत्तराखंड से।
0: मोहम्मद सुहेल जी बोल रहे हैं, काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहे हैं आप।
1: जी जी जी
0: तो आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। मोहम्मद
1: जी
0: सुहेल
1: हेलो
0: जी,
1: मैम।
0: जी आकाशवाणी आगरा सुनते हैं आप?
1: जी हाँ, मैं एप्लीकेशन के माध्यम से सुनता हूँ ऑनलाइन।
0: अच्छा, ऐप के माध्यम से सुनते हैं।
1: जी जी जी जी
0: कब से सुन रहे हैं आप?
1: ये मैंने अभी एक आध महीना हुआ है बस स्टार्ट किए हुए।
0: अच्छा, तो अभी आपने 1 महीने पहले से सुनना शुरू किया है। कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम हमारे?
1: जी अच्छे लगते हैं। मैं फ्राइडे में जो आते हैं ना, मैं वही वाले कार्यक्रम सुनता हूँ बस।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं एक मूवी है मेरे हमदम मेरे सनम छल का जाम।
0: मेरे हमदम मेरे सनम फिल्म से आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये
1: हाँ
0: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो है ये श्रोताओं के लिए ही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं सबको 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: जैसे कि
1: और
0: अब इस
1: ये
0: कार्यक्रम में
1: अभी
0: हम
1: मैंने
0: श्रोताओं की फरमाइश को शामिल करते हैं, जैसे आपकी तरह ही और भी श्रोता हमें फोन कॉल्स करते हैं और उनकी पसंद
1: अच्छा
0: के गीत हम सुनवाते हैं। तो कार्यक्रम के बारे
1: जी
0: में कुछ कहना चाहते हैं आप? कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम?
1: जी बहुत अच्छा लगता है मुझे, सब सुनता हूँ मैं, सब मुझे अच्छा लगता है।
0: जी, तो ठीक है सुहेल जी, हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत और आगे भी आप अपनी

0: फरमाइश हमको फोन करके कार्यक्रम में बता सकते हैं।
1: जी,
0: इसकी
1: ओके।
0: रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है हर शुक्रवार, समय है दोपहर 12 से 2 बजे तक,
1: अच्छा मैम,
0: और इसका प्रसारण होता है सोमवार को रात
1: जी
0: को,
1: जी
0: सोमवार रात 10 बजे
1: अच्छा मैम, ओके
0: जी, और इसका दोबारा प्रसारण होता है मंगलवार दोपहर 3 बजे।
1: ओके मैम, शुक्रिया।
0: ठीक है, तो सुहेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं
1: जी
0: आपको ये गीत।
1: जी जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हाँ, मैं अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ बोल रहा हूँ,
1: नमस्कार अनिल जी,
0: आगरा से बोल रहा हूँ मैं।
1: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में।
0: जी
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं?

0: अनिल जी
1: मैं PNG कॉलोनी आगरा कैंट से बोल रहा हूँ।
0: जी, आप आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
1: मैं तो जब से आकाशवाणी आगरा में स्टेशन खुला है
0: जी
1: तभी से सुनो, बचपन से। मेरी आयु 76 वर्ष की है
0: जी
1: और मैंने बचपन से, जब से आगरा में आकाशवाणी स्टेशन खुला है
0: जी
1: तब से देख रहा हूँ।
0: प्रणाम करते हैं सर आपको और आपके इस जज्बे को भी कि आकाशवाणी आगरा से आप इतने समय से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हुए हैं।
1: जी,
0: तो आकाशवाणी आगरा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर?
1: आकाशवाणी आगरा एक बहुत अच्छा काम कर रही है जिसमें समाज सेवा करने वालों को और जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको, सबकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और
0: जी
1: सबको अवसर दिया जाता है।
0: जी
1: एक आपके यहाँ किसी जमाने में स्वर्गीय श्री राममोहन दुबे जी म्यूजिक डायरेक्टर करके आया करते थे आपके।
0: जी लखनऊ लखनऊ के
1: हाँ, लखनऊ पर भी आगरा पर भी आते थे। तो उनका छोटा भाई बसंत मेरा क्लास फेलो था,

0: में स्वर्गीय श्री राममोहन दुबे जी म्यूजिक डायरेक्टर करके आया करते थे आपके।
1: जी लखनऊ, लखनऊ के।
0: हाँ, लखनऊ पर भी आगरा पर भी आते थे। तो उनका छोटा भाई बसंत मेरा क्लास फेलो था, तो हमारा अटैचमेंट रहा है काफी।
1: जी, राममोहन दुबे जी जो है सर, वो लखनऊ केंद्र के निदेशक थे ना?
0: नहीं सर, वो यहाँ के थे, आगरा के ही
1: जी।
0: संगीतकार थे वो, और वो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। तो उनका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो था।
1: अरे सर, बहुत जानकर खुशी हुई। और ये बात आपने जो कही कि प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाता है, हमारी जो कोशिश है वो भी यही है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये आकाशवाणी का उद्देश्य है।
0: जी हाँ, जी हाँ,
1: तो कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद जो कार्यक्रम है, ये आपने इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, ये श्रोताओं के लिए है?
0: हाँ, ये तो ऐसा है कि इसके माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना अपने मन की बात, तो उनके मन
1: जी,
0: की बात वो 140 करोड़ भारतवासियों की बात बन जाती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: ऐसे ही जो आपका ये जो प्रोग्राम है आपके पसंद वाला,
1: जी
0: तो ऐसा लगता है कि जितने आकाशवाणी के श्रोता हैं, भारत के नागरिक हैं, 140 करोड़, वो
1: जी
0: साफ जुड़ जाते हैं इससे।
1: आपने तो जो जिस चीज की मिसाल दी है, कह लें कि एक तरीके से जो आपने तुलना की है, मतलब वो
0: जी
1: बहुत ही प्रशंसनीय है सर। और हम
0: जी
1: जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी जो बात है वो, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक जुड़ सकें, और श्रोता अपने मन की बात, अपने मन की पसंद हमें बता सकें।
0: हाँ बिल्कुल, अगर मोदी जी को बता सकते हैं मन की बात, तो आकाशवाणी को भी बता सकते हैं, आकाशवाणी और
1: आकाशवाणी के
0: मोदी
1: माध्यम
0: जी।
1: से ही बताते हैं सर मन की बात।
0: हाँ
1: आकाशवाणी के माध्यम से ये, इसको कहते हुए हम
0: ये
1: बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: आकाशवाणी तो ऐसी है जो ऊपर वाले को नीचे वालों से कनेक्ट करती है।
1: बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रशंसनीय वाक्य के लिए। और कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: क्या भजन सुनवा सकती हैं?
1: जी, फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भक्तिमय प्रस्तुति, फिल्मों में भी कई ऐसी भक्तिमय प्रस्तुतियां हैं, तो आप बताइए।
0: हाँ, तो वो सुनवाइए, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा।
1: वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, जी बहुत सुंदर भजन है जी, हम कोशिश करते हैं और आपको सुनवाते हैं। आप लगातार इसी तरह हमारे कार्यक्रम से बने रहिएगा, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा सर, हमें प्रतीक्षा रहेगी।
0: रोक टोक तो नहीं है, अगर ये दोबारा कभी और कोई सुनना चाहे तो कर सकते हैं।
1: नहीं सर, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, आप हर बार कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: तो नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: हेलो। हाँ जी
1: जी
0: मैम, गुड
1: नमस्कार।
0: आफ्टरनून।
1: गीत संगीत के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है।
0: जी मैम, थैंक यू।
1: कौन बोल रहे
0: मैम
1: हैं?
0: मैं डॉक्टर शिव आगरा से
1: डॉक्टर
0: बोल रहा
1: शिव
0: हूँ। हाँ
1: आगरा से बोल रहे हैं। सर
0: जी
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि गीत संगीत के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है, तो कार्यक्रम गीत संगीत का तो है ही, साथ ही आपकी फरमाइशों का भी है जैसा कि आप जानते हैं।
0: हाँ जी मैम।
1: तो आप पहली बार फोन कर रहे हैं?
0: नहीं मैम, दूसरी बार फोन कर रहा हूँ मैं।
1: दूसरी बार फोन कर रहे हैं।
0: हाँ जी मैम।
1: और गीत संगीत का शौक है आपको?
0: जी मैम।
1: जी। और क्या आप करते हैं?
0: मैम एज मैं एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हूँ।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो
0: हाँ
1: मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप और ऑफिसर
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ जी मैम।
1: तो आपको तो बहुत सारे अनुभव होते होंगे इमरजेंसी सेवाओं को लेकर, और मतलब मरीजों के जो आपातकालीन जो स्थितियां पैदा होती हैं उसको लेकर। तो ऐसे में
0: जी
1: संगीत का क्या रोल मानते हैं आपकी, जैसे जब कभी जीवन में थोड़ा सुकून की जरूरत होती है या तनाव से थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो ऐसे में संगीत की भूमिका क्या होती है?
0: संगीत की भूमिका होती है मैम, जो पेशेंट्स होता है मैम,
1: जी।
0: जो अगर एडमिटेड है तो जो उसके मेडिसिन्स और जो उसके ट्रीटमेंट चल तो रहा ही है, लेकिन वो उस कंडीशन में वो थोड़ी मेडिकल टेंस होता है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उसके उस साइकेट्रिक या उस उसके मेंटल एक्यूट मेंटल इलनेस को
1: जी
0: संगीत के थ्रू काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो संगीत की एक ये भूमिका होती है
1: जी
0: उस मेडिकली इम्पेशेंट में।
1: जी क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया और उम्दा बात कही आपने। तो क्या आपको ऐसे अनुभव भी हुए हैं आपके करियर के दौरान?
0: हाँ जी मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जो है बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उस टाइम पे होता है कि यार कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ
1: रिलैक्स
0: जाए,
1: चाहिए
0: तो
1: होता
0: उसमें
1: है।
0: हाँ तो उसमें रिलैक्स हुआ जाए, तो उसके लिए मैम अगर थोड़ा सा एक स्लो म्यूजिक अगर चला दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस काफी हद तक दूर हो गया। तो इस म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
1: नहीं, जैसे पेशेंट्स को लेकर आपको अनुभव हुआ, ये तो आप शायद अपनी खुद की बात कर रहे हैं, जैसे मरीजों को लेकर आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि आपने देखा हो।
0: हाँ जी मैम, पेशेंट्स जो वार्ड्स में जनरली जो इमरजेंसीज में होते हैं वो पेशेंट तो मेडिकली साउंड नहीं होते
1: वो तो
0: हैं,
1: नहीं
0: जो
1: यहाँ
0: वो
1: कर
0: म्यूजिक
1: पाते हैं। जी
0: सुनते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन जो वार्ड में पेशेंट्स होते हैं
1: थोड़े
0: उनको मैंने
1: स्टेबल
0: बहुत
1: होते
0: बार
1: हैं।
0: अनुभव किया है कि वो अपने ईयरफोन लगा के या
1: जी
0: जिनको उस चीजों में रुचि होती है तो वो म्यूजिक काफी सुनते हैं और काफी हद तक वो उस एक्यूट मेडिकल इलनेस कंडीशन से वो काफी अच्छा उनको फील
1: उनकी
0: होता है।
1: रिकवरी में बहुत इससे मदद मिलती है।
0: जी हाँ। हाँ जी मैम।
1: जी ठीक है डॉक्टर शिव, आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मैम अभी मैं सुनना चाहता हूँ अभी ना जाओ छोड़ के, अभी
1: क्या
0: तो
1: बात
0: दिल
1: है,
0: भरा नहीं।
1: बहुत
0: हाँ
1: सुंदर गीत है ये,
0: जी
1: मोहम्मद
0: मैम।
1: रफी जी की आवाज में।
0: हाँ जी मैम।
1: और आइए सुनाते हैं आपको फिल्म हम दोनों का ये गीत, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कॉल करेंगे कार्यक्रम
0: जी
1: में।
0: हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू सो
1: धन्यवाद
0: मच।
1: डॉक्टर शिव।
0: ओके ओके, थैंक यू मैम।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: जीवन के इस सफर में उम्मीदों की रोशनी को कभी कम ना होने दें। आशा के लिए अपने जीवन में हमेशा द्वार खुले रखें। जी हाँ, विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसके आधार पर तय होती है कोई भी मजबूत इमारत। जी हाँ, एक सुंदर और सच्चे भविष्य की जीवन की इमारत। ऐसा ही एक विश्वास से जुड़ा हुआ नाता है हमारा हमारे श्रोताओं से। आकाशवाणी परिवार अपने श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और हम आपसे कहते हैं कि आपके कॉल्स हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद को सफल बनाने में आपका बहुत बहुत योगदान है। तो भेजिए हमें अपनी फरमाइश और कीजिए कॉल। कॉल के माध्यम से बताइए हमें कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद संपन्न होता है। मैं वैशाली शर्मा आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होती है। फोन नंबर है 0562-3501-852 और 0562-2970-337। इस नंबर पर फोन करके आप अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार रात 10 बजे होता है और इसका पुनः प्रसारण मंगलवार को दोपहर 3 बजे आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक थी वैशाली शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की खड़ी में दिन के 3:30 हो रहे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को ही थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएसआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि एआई का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गढ़ परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गजेंद्र सिंह का ख्याल गायन। अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर सुनेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 आज के आकर्षण रहेंगे। पारिस्थितिकी संहार विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा अतुलनीय भारत क्रम में आप जानेंगे पवित्र उपवन के विषय में। हेल्थ प्लस क्रम में

स्वस्थ धरा से ही है स्वस्थ जीवन विषय पर जानकारी। इसके अलावा चेतना आर्या की वार्ता प्रसारित की जाएगी, पर्यावरण का पोषक वृक्षारोपण। ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6 बजे चर्चा होगी पीएम कुसुम योजना विषय पर। एक और चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस विषय पर। वार्ता प्रसारित की जाएगी, मंडी भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा मजदूर मंडल शाम 6:30 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा वनस्पति जगत और हमारी पृथ्वी। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी, बढ़ता तापमान जिम्मेदार कौन। आज का प्रश्न होगा ज्ञान सागर, पोषण टिप्स और फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर नितिन कुमार की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है जैव विविधता। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश, संध्या 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती, और चित्रपट संगीत 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन में सुकरात के विचार प्रसारित किए जाएंगे 6:25 पर। 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान, और हर रोज की तरह 6:45 पर कार्यक्रम होगा खेती की बातें। इसमें विनय सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी, डेयरी प्रबंधन हेतु सुझाव। कल प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता, आंखों के लिए पोषण का महत्व। दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 9:45 पर आप सुनेंगे ज्वाला प्रसाद और साथियों के गाए लोक भजन। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत, पूर्वाह्न 11:30 पर। इसमें कल का विषय रहेगा जल जीवनदायक है, इसे व्यर्थ न करें। बहनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें चर्चा होगी आज के दौर में मेंटल हेल्थ की अहमियत। मेरी माटी मेरा देश क्रम में फखरुद्दीन अली अहमद विषय पर जानकारी होगी, मुझे कुछ कहना है मैं आप जानेंगे फोन फुल दिल एम्प्टी क्यों। बात पते की क्रम में आप जानेंगे खुद को समय देना भी जरूरी है। इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी विधि का विधान ये कहानी, कहानीकार होंगी डॉक्टर कविता रायजादा। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

लो मैं आ गया। इस फिल्म का भक्ति गीत आपने सुना उदित नारायण नूतन और साथियों के स्वर में। देव कोहली की रचना को संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने। गीत गाता चल फिल्म की चौपाइयां हम आपको सुनवा रहे हैं। पारंपरिक रचना है, आवाजें हैं जसपाल सिंह और साथियों की, संगीत रविन्द्र जैन का है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में अपने पराए फिल्म की ये भक्ति रचना, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत बापी लाहिरी का है।

चंदा और बिजली फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी मन्ना डे के स्वर में। नीरज की इस रचना को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसके साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग। ये है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ऋषु वर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों वैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, अपनी हेल्थ का हो गया, अपने करियर का, अपने फ्यूचर का, लेकिन एक चीज़ है जो इन सब से जुड़ी हुई है और जिसके बिना हमारी लाइफ का बैलेंस ही पॉसिबल नहीं है एंड उसके लिए एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर रहे, वो है एनवायरनमेंट, जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों इसी इग्नोरेंस की वजह से आज हमारा एनवायरनमेंट कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस और नेचर

0: प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स की जो सिर्फ डिस्कशन का टॉपिक नहीं होता बल्कि हमारे फ्यूचर से जुड़े हुए सवाल भी हैं। अब आप वैसे सोच रहे होंगे, आज ना तो एनवायरनमेंट डे है ना ही अर्थ डे है, तो आज का डिस्कशन एनवायरनमेंट पर क्यों? तो देखो, पहली बात तो अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचर के बारे में सोचने के लिए ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर डे का हम वेट करें। और दूसरी बात, हाँ माना आज ना तो एनवायरनमेंट डे है और ना अर्थ डे है, पर आज एक ऐसा दिन ज़रूर है जिसका ऑब्जेक्टिव है प्लांट और हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में बताना। तो ये तो आपकी हो गई एक हिंट। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका आंसर कि आज वो कौन सा दिवस हम मना रहे हैं। अब आप सोचिए, सर्च कीजिए और कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसका उत्तर आपको अंत में ही मिलेगा। दोस्तों, आप जरा सोचिए, अगर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर जितने पेड़ बचे हैं वो खत्म होने लगें, नदियाँ और भी ज़्यादा गंदी हो जाएं, हवा और जहरीली हो जाए और एनिमल्स के रहने के लिए जगह ही ना बचे, तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? दोस्तों, इसी का सवाल का जवाब छुपा है हमारी चर्चा में, जहां हम समझेंगे इकोसाइड यानी पारिस्थितिकी संहार के बारे में। देखो, आज टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के इस दौर में इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं और नई नई सुविधाएं भी आ रही हैं। और वैसे भी कल हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस तेज डेवलपमेंट की रेस में कहीं ना कहीं नेचर पीछे छूटता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जंगलों को काटकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कई नदियां इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से गंदी हो चुकी हैं, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि कई सिटीज में लोगों को सांस लेने तक में तकलीफ होने लग गई है। दोस्तों, इसी सिचुएशन को समझने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है इकोसाइड, यानी नेचर या एनवायरनमेंट को इतने बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाना कि उसका इफेक्ट सिर्फ ट्रीज या एनिमल्स तक सीमित ना हो बल्कि पूरी इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ पर पड़ने लगे। जैसे बड़े बड़े एरियाज में फॉरेस्ट की कटाई, समुद्र और नदियों में टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ना, माइनिंग की वजह से जमीन खराब हो जाना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, वैसे पहले मौसम एक तय साइकिल में चलता था ना, वहीं अब देखो, अब तो कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी अचानक हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो कभी फ्लड्स और स्टॉर्म्स जैसे डिजास्टर्स देखने को मिल जाते हैं। पता है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इसी तरह से बढ़ता रहा ना, तो फ्यूचर में डेफिनेटली पानी और क्लीन एयर जैसी बेसिक चीज़ों की बहुत कमी हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए कई एनवायरमेंटलिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि इकोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर दिया जाए, ताकि जो कंपनीज या लोग जानबूझकर एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। देखो, हमारे इंडिया में भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई लॉज बने हुए हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और ऐसे कई एक्ट्स हैं। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि सिर्फ लॉज बनने से सब कुछ बदलेगा नहीं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाएंगे और लोग खुद अवेयर नहीं होंगे ना, तब तक एनवायरनमेंट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, और ये बात सही भी है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे नेचर डिस्ट्रॉय ना हो। अगर हम सिर्फ अपने प्रेजेंट कंफर्ट के बारे में सोचेंगे और नेचर को इग्नोर करेंगे ना, तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ सरकार या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें हम सबकी इक्वली पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक बैग्स का ही एग्जाम्पल ले लो, प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करके आप क्लॉथ बैग्स यूज कर सकते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं जिससे यंग जनरेशन भी अवेयर हो सकती है। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर धरती को फिर से हरा भरा बनाना है ना, तो सबसे आसान और पावरफुल तरीका है वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का भी काम करते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आइए सुनते हैं हमारी आज की वार्ता, पर्यावरण का पोषक वृक्षारोपण, वार्ताकार चेतन आर्य से।
1: पर्यावरण शब्द संस्कृत

भाषा के परि और आवरण से मिलकर बना है। परि मतलब चारों तरफ और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दोस्तों, सामान्य अर्थ में ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सभी जैविक व अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से निर्मित इकाई है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है और हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच का संबंध भी घनिष्ठ होता है। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण। साथियों, तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन ही नष्ट कर दिया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, इसके एक समस्या के रूप में वायु प्रदूषण विकराल रूप धारण कर चुका है। शुद्ध वायु का तो जैसे अभाव ही हो गया है। अब जरा सोचिए कि दूषित वायु में सांस लेने वाला मनुष्य स्वस्थ और निरोग कैसे रहे। पिछले दिनों कल कारखानों की वृद्धि को ही विकास का आधार माना जाता रहा है। खाद्य उत्पाद के लिए कृषि और सिंचाई पर जोर दिया जाता रहा है, किंतु वन संपदा की महत्ता समझने की ओर जितना ध्यान देना जरूरी था उतना नहीं दिया गया। लकड़ी के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाता रहा और उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने की उपेक्षा बरती जा रही है। साथियों, ये पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसलिए समय की मांग है पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, प्राणी अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर निर्भर रहता है। मनुष्य हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को सांस द्वारा ग्रहण करके जीवित रहता है। साथियों, पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए मनुष्य के जीवन का आधार पेड़ पौधे ही उसे प्रदान करते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसका जवाब है वृक्षारोपण। आज धरा है हमसे पूछती कि वो प्रकृति लगती खाली, जहाँ कभी थे झूमते पेड़ और चहुदिस्थी हरियाली। जो हमको जीवन देती उनकी जान ही खतरे में डाली, कहाँ गए पेड़ों के रक्षक, कहाँ खो गए वनमाली। साथियों, जरूरत है एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाने की, मतलब वृक्षारोपण करने की। इन वृक्षों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। घने वनों की हरियाली देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। वृक्ष स्वयं धूप में रहकर हमें छाया देते हैं। जब तक हरे भरे रहते हैं तब तक हमें फल और सब्जियां देते हैं और सूखने पर लकड़ी। प्राचीन काल से ही मानव और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। भोजन, वस्त्र, आवास की समस्याओं का समाधान भी इन्हीं वृक्षों से हुआ है। दोस्तों, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार है ये वन। इन्हीं वनों से पृथ्वी को बंजर होने से बचाया जाता है और इसलिए प्रतिवर्ष हमारे देश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है। ये महोत्सव लोगों में पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता फैलाने में सहायक है। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। प्रत्येक नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस सप्ताह एक पौधा जरूर लगाए। वन महोत्सव के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। साथ ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा निःशुल्क पौधों का वितरण भी किया जाता है। साथियों, वन महोत्सव पर पौधे लगाकर कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था, भूमि संरक्षण। ये उत्सव लोगों में ये जागरूकता फैलाता है कि पेड़ लगाना और उनका रख रखाव करना ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक ये वृक्ष ही हमारे काम आते हैं। इनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, अपने और आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण करना ही होगा, क्योंकि पर्यावरण का पोषक है वृक्षारोपण। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना,
वासितम्।

0: वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा, अर्थात जिस प्रकार से एक अच्छा पुत्र अपने कुल का नाम रोशन करता है, ठीक उसी प्रकार से एक वृक्ष अपनी सुगंध से पूरे जंगल को सुगंधित करता है। इसलिए वृक्षारोपण अवश्य करें।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी वार्ता पर्यावरण का पोषक वृक्षारोपण वार्ताकार चेतन चेतना आर्य से, और हमने जाना कि जब इंसान नेचर को लगातार नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसका असर सिर्फ एनवायरनमेंट पर नहीं बल्कि हमारी लाइफ और फ्यूचर पर भी पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट की तरफ देखें ना, तो पता चलता है कि हमारे देश में नेचर प्रोटेक्शन कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, भारत में सेंचुरीज पहले से ही लोगों ने फॉरेस्ट, रिवर्स और एनिमल्स की रिस्पेक्ट की दी है। हमारी ट्रेडिशंस में नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है, और शायद यही रीज़न है कि आज भी भारत में कुछ ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जहां लोग मॉडर्न लॉज की वजह से नहीं बल्कि अपनी फेथ और कल्चर की वजह से नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेक्रेड ग्रोव्स की, यानी पवित्र उपवन। हम सभी को पता है कि भारत अपनी रिच कल्चर, ट्रेडिशंस और वास्ट डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन हमारे ट्रेडिशंस की सबसे स्पेशल बात पता है क्या है, कि यहाँ प्रकृति और भक्ति का कनेक्शन हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग और प्योर रहा है। हमारे देश में ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स और फॉरेस्ट को सिर्फ नेचर नहीं माना गया है बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट और पूजनीय भी माना गया है। दोस्तों, इसी सोच का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारे सेक्रेड ग्रोव्स, यानी फॉरेस्ट या ग्रीन एरियाज, जिन्हें लोकल कम्युनिटीज अपनी फेथ और ट्रेडिशन की वजह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लोगों का मानना होता है कि इन प्लेसेस पर भगवान, लोकल डीटीज या स्पिरिचुअल पावर्स का वास होता है। इसी वजह से यहाँ ट्रीज काटना, हंटिंग करना या नेचर को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत माना गया है। दोस्तों, एक अमेजिंग बात बताती हूँ आपको। इंडिया में अराउंड 1 लाख से ज़्यादा और 1.5 लाख तक ग्रोव्स हैं, जो प्रिडोमिनेंटली वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और हिमालयाज में पाए जाते हैं। आज और जब पूरी दुनिया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तब इंडिया की ये एंशियंट ट्रेडिशंस हमें सिखाते हैं कि नेचर को बचाने के लिए सिर्फ लॉज नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन भी ज़रूरी है। मेघालय के खासी और जयंतिया कम्युनिटीज के सेक्रेड ग्रोव्स भी पूरी दुनिया में फेमस हैं, जहां इतने डेंस फॉरेस्ट है कि सूरज की रोशनी मुश्किल ही जमीन पर पहुंच पाती है। ये फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ कई रेयर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वहीं राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी भी नेचर प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये ग्रोव्स एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी यूजफुल होते हैं। अगर हम नेचर को सिर्फ यूज करने की चीज समझेंगे ना, तो शायद हम एनवायरनमेंट को कभी ट्रूली प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उसे रिस्पेक्ट करना सीख जाएं, तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली अपने आप शुरू हो जाएगी। और शायद यही मैसेज इंडिया के ट्रेडिशंस हमेशा हमें देते हुए आए हैं कि नेचर के साथ बैलेंस में रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी अपनी डेली लाइफ में नेचर के लिए थोड़ा केयर और रिस्पेक्ट जरूर दिखानी चाहिए। अब चलिए, इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ अब टाइम है एक प्यारे से सॉन्ग का।

दोस्तों, वैसे आजकल हम सब अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं ना। कोई जिम जा रहा है, कोई डाइट फॉलो कर रहा है, कोई स्किन केयर रूटीन बना रहा है, तो कोई फिटनेस रील्स देखकर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली हम यंग जनरेशन, हम हेल्थ और फिटनेस को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं अब। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग पहले से ज़्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं? छोटी सी उम्र में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, बीपी प्रॉब्लम्स, लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन क्यों होती जा रही हैं? कभी-कभी पूरा दिन बिना कुछ किए ही टायर्ड फील होता है। बाहर निकलो तो इतनी गर्मी लगती है कि कुछ देर में एग्जॉशन हो जाता है। आज पॉल्यूशन हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक बन चुकी है। एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि यंग जनरेशन को अस्थमा और ब्रीदिंग इश्यूज होने लग गए हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेशन अब कॉमन वर्ड्स बन चुके हैं दोस्तों। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर हमें अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें नेचर के करीब जाना होगा, क्योंकि नेचर और मेंटल पीस का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। जब हम किसी पार्क या हिल स्टेशन या ग्रीनरी वाली जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड काम फील करता है ना, क्योंकि नेचर सिर्फ बॉडी को नहीं माइंड को भी हील करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज अर्बन लाइफस्टाइल में ग्रीनरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ट्रीज कम हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, यंग जनरेशन का नेचर से कनेक्शन बिल्कुल टूट सा ही गया है। इसीलिए आज सिर्फ हेल्दी फूड खाना इनफ नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हवा पॉल्यूटेड होगी, पानी अनसेफ होगा और सराउंडिंग्स अनहेल्दी होंगी ना, तो इसका असर हमारी बॉडी पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि चेंज पॉसिबल है, और उस चेंज की शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें फ्यूचर में हेल्दी और पीसफुल लाइफ चाहिए तो हमें नेचर को हेल्दी रखना होगा। हम अक्सर कहते हैं ना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लेकिन शायद अब टाइम आ गया है कि हम कहें टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एज वेल। क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि इंटरकनेक्टेड ही हैं। अगर एनवायरनमेंट सेफ है तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ भी अच्छी है। अब दोस्तों, मेंटल पीस और अटेन करने के लिए हमें सुनना होगा एक पीसफुल सा

दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, पर जाते जाते उस सवाल का जवाब सुनते जाइए। आज हम अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्लांट्स और उनकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। तो दोस्तों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए और नेचर से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करिए। और अपने रेडियो दोस्त ऋषि वर्मा को आज्ञा दीजिए, आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

राम राम भाइयों बहनों, मैं लोकेंद्र पाठक कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं साथियों भाई? गर्मी के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हम किसानों की मेहनत तो बढ़ ही जाती है। वैसे भी साथियों, खेती किसानी एक रोजगार का साधन कम बल्कि सेवा का काम अधिक है। जैसे एक नर्स रोगी की सेवा करती है, वैसे ही एक किसान खेत में अनाज उगाकर समाज की सेवा करता है। मित्रों, आज हमारी चर्चा में नर्स की बात इसलिए आ गई क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और ये दिन उन नर्सों को सम्मान देने का है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती है। एक नर्स अपने धैर्य और समर्पण से लोगों की देखभाल करती है। लोगों की सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। अच्छा, यही बात हम किसानों पर भी लागू होती है। साथियों, एक जागरूक और आधुनिक किसान खेती किसानी से सेवा के साथ साथ पैसे भी कमा रहा है। आपने सुना होगा कि किसी किसान ने ड्रैगन फ्रूट बेचकर लाखों रुपए कमा लिए, तो किसी किसान ने फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन करके बहुत सारे पैसे कमा लिए। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ किसानों को मनचाहा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक है कि वो खेती की लागत कम नहीं कर पाते हैं। बहुत से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही प्रकार से नहीं ले पाते हैं। मित्रों, फसल की सिंचाई में बिजली बहुत खर्च होती है, लेकिन इसका भी हल जागरूक किसानों ने निकाल लिया है और वो है पीएम कुसुम योजना। आज बहुत से किसान साथी सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से पैदा की गई, उत्पन्न की गई ऊर्जा

से भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें सरकार से भी सहायता मिल जाती है और खुद के जो पैसे खर्च होते थे वो बचने लगे हैं। तो भाई पैसे तो एक तरह से लाभ हो ही रहा है ना। हमारी केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के द्वारा किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें और बहुत ही कम खर्चे में अच्छी फसल उगा सकें। इस योजना में सरकार किसानों को किसान की जमीन पर सोलर पंप लगवाने के लिए, सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकारी सहायता देती है। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगवाने पर 90% तक सब्सिडी मिल जाती है। बताओ, मतलब लगभग पूरा पैसा तो मिल ही गया। और आज तक इस योजना का लाभ करोड़ों किसानों ने उठाया है और अपनी खेती को एक फायदे का सौदा बनाया है। साथ ही हमारे क्षेत्र में जो आगरा का क्षेत्र है, आगरा के आसपास का क्षेत्र है, कितनी गर्मी पड़ती है सब जानते हैं, लेकिन सूरज भी तो भैया खूब निकलते हैं। आप सोचिए, यदि यही धूप कमाई का साधन बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोलर पंप दिन में धूप से चलता है, न डीजल का खर्च न बिजली की चिंता। इससे किसान का पैसा भी बचता है और समय भी। और सबसे बड़ी बात है, सिंचाई समय पे हो जाती है। सिंचाई के लिए बार बार बिजली या डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले क्या होता था याद कीजिए, बिजली आने का इंतजार करना पड़ता था, कई बार रात में खेत में जाना पड़ता था ताकि मोटर चला सके, हम रात में जगना पड़ता था। भाई जब हम अपने खेतों में पानी देते हैं तो ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब कितना अच्छा हो कि ये पंप सौर ऊर्जा से ही चल जाएंगे, और भैया सूरज की रोशनी तो खत्म होने वाली नहीं है, यानी हमें एक तरह से निशुल्क हमारी सिंचाई हो जाएगी। आज हम पीएम कुसुम योजना में अपने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले पंपों को भी सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप पे बदलवा सकते हैं। इस योजना में सोलर पैनलों के द्वारा बिजली का निर्माण होगा, जिसे हम किसान लोग खेतों में पानी लगाने के लिए पंप चलाने में, और इसके साथ ही भैया घर में जो टीवी पंखे होते हैं ना उसे भी चलाने में कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसान साथी पीएम कुसुम योजना से पैसे भी कमा सकते हैं। इससे खेत में पानी लगाने के साथ साथ घर के लिए बिजली भी मुफ्त मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा बिजली बना ली ना तो उस बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, है ना भैया मजेदार बात। तो ये बहुत एक लाभकारी योजना है और इसका लाभ आपको भी लेना चाहिए। और इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें करना क्या है, एक सरकारी वेबसाइट है www.india.gov.in। यहां पर आप जाइए, यहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नहीं ऑनलाइन फॉर्म भरना जानते हैं तो जन सेवा केंद्र यानी कि निकट का जो CSC होता है वहां जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो है ना अच्छी योजना। तो चलिए साथियों, ऐसा ही एक अच्छा सा लोकगीत भी सुनते हैं।

0: साथियों, पौधे स्वस्थ रहते हैं तभी अच्छी और सुरक्षित फसल प्राप्त होती है। इसलिए पादप स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि फसलों में रोग और कीट लग जाएं तो उत्पादन कम हो जाता है और भोजन की कमी की समस्या बढ़ सकती है। समय पर दवा, सही खाद और उचित देखभाल से पौधों को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है और स्वस्थ पौधे ही किसान की आय बढ़ाते हैं। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। आइए डॉक्टर नेत्रपाल मलिक से जानते हैं कि छोटे किसानों के लिए पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यवहारिक उपाय क्या है।
1: प्यारे किसान बहन भाइयों, बहुत बार देखा गया है कि जब हमारी फसल में रोग व कीटों का प्रकोप हो जाता है, हम तभी उनके नियंत्रण के उपाय करते हैं। ऐसी स्थिति में हम रोग व कीट नियंत्रण के लिए सीधे कृषि रसायनों का फसल पर छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, कृषि रसायनों का प्रभाव हमारे भोजन में भी आ जाने की आशंका रहती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरंभ से ही पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यवहारिक उपाय अपनाने से हमारी फसल स्वस्थ रहती है, साथ ही उत्पादन लागत भी कम आती है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही व्यवहारिक उपायों पर जिन्हें अपनाकर हम स्वस्थ फसल उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है गर्मियों की गहरी जुताई। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें। ऐसा करने से मिट्टी में छिपे कीट, अंडे, प्यूपा तथा रोगजनक जीव ऊपर आ जाते हैं, वे तेज धूप व गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा उपाय है अनुकूल प्रजातियों का चयन, बीज उपचार और भूमि शोधन। हम जिस भी फसल की बुआई कर रहे हैं उसकी रोग रोधी एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियों का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित अवश्य करें। बीज उपचार के लिए जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा या रासायनिक फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा की 4 से 5 ग्राम व कार्बेंडाजिम की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आवश्यक होती है। बुआई से पहले इन दोनों में से किसी भी एक फफूंदनाशी की आवश्यक मात्रा बीज में अच्छी प्रकार से मिला लें। फफूंद जनित रोग बीज के साथ साथ पौधों में मिट्टी से भी आते हैं, अतः हमें मिट्टी का भी शोधन कर लेना चाहिए। 1 एकड़ खेत की मिट्टी के शोधन के लिए 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद एवं 2 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर लें। गोबर की खाद को छायादार स्थान पर फैला लें। इसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर अच्छी तरह से मिलाएं। ढेर को टाट की बोरी से ढक दें। लगभग 1 सप्ताह तक छाया में रखें, नमी बनाए रखें। इसके बाद खेत में अंतिम जुताई के समय बिखेर दें। खेत के क्षेत्रफल के अनुसार गोबर की खाद एवं ट्राइकोडर्मा पाउडर की मात्रा इसी अनुपात में कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों से फसल का बचाव होता है। तीसरा उपाय है उचित दूरी। बुआई या रोपाई करते समय पौधों के बीच उचित दूरी रखें, ताकि पौधों को पर्याप्त हवा और प्रकाश मिल सके। घनी बुआई करने से रोग तेजी से फैलते हैं। चौथा उपाय है संतुलित पोषण प्रबंधन। प्राय देखा गया है कि हम फसल में नत्रजन एवं फास्फोरस या यूं कहें कि यूरिया व डीएपी का अधिक प्रयोग करते हैं, परंतु अन्य पोषक तत्वों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपनी फसलों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए।

साथ साथ खेत में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद आदि का नियमित प्रयोग करें। हरी खाद जैसे ढेंचा उगाकर मिट्टी में मिला दें। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें जैसे उड़द, मूंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। फलियां तोड़ने के बाद इन फसलों को खेत की मिट्टी में मिला दें। ऐसा करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, हमारी फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता

0: अपनाना बहुत आवश्यक है। फसल चक्र में हम दलहनी फसलों एवं धान्य फसलों के क्रम, अधिक पोषक तत्व लेने वाली व कम पोषक तत्व लेने वाली फसलों के क्रम तथा गहरी जड़ एवं उथली जड़ वाली फसलों के क्रम का ध्यान रखते हैं। छठा उपाय है समय पर सिंचाई और जल निकासी। अधिक या कम पानी दोनों ही पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। अधिक पानी होने से पौधों में जड़ गलन जैसे रोग होते हैं, कम पानी होने से पौधा कमजोर रह जाता है। अतः खेत में पानी जमा न होने दें, आवश्यकता अनुसार ही समय पर सिंचाई करें। यदि संभव हो तो सिंचाई टपक या फव्वारा विधि से करें, इससे पानी भी बचेगा, फसल भी स्वस्थ रहेगी। सातवां उपाय है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार फसल के पौधों से पोषक तत्व और पानी तो छीनते ही हैं, साथ ही बहुधा रोग व कीटों के वाहक भी होते हैं, इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। आठवां उपाय है रोग व कीटों की नियमित निगरानी। अपने खेत का नियमित निरीक्षण करें। यदि फसल में रोग या कीट के आरंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल उपाय करें। आरंभ में रोग व कीटों का नियंत्रण आसान व सस्ता होता है। नौवां उपाय है रोग व कीट प्रबंधन की जैविक एवं प्राकृतिक विधियां। हमें रोग व कीट नियंत्रण के लिए सीधे रासायनिक दवाइयों पर ही नहीं जाना चाहिए, हमें जैविक एवं प्राकृतिक उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे नीम की निबोलियों का सत, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, दसपर्णी अर्क, ट्राइकोडर्मा, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप इत्यादि हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इन्हें घर पर तैयार करना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए 5% नीम की निबोलियों का सत तैयार करने के लिए 100 लीटर पानी और 5 किलोग्राम गूदा हटी हुई सूखी निबोलियां लें। निबोलियों को दरदरा पीस लें, बहुत महीन पाउडर न बनाएं। इस चूर्ण को एक पतले कपड़े में पोटली बनाकर रात भर पानी की बाल्टी में भिगो दें। सुबह पोटली को दबाकर दूधिया रस बाल्टी के पानी में निकाल लें। अब इस घोल में पानी मिलाकर कुल मात्रा 100 लीटर कर लें। यह घोल फसल पर छिड़काव के लिए तैयार है। कम या ज्यादा मात्रा में घोल तैयार करने के लिए इसी अनुपात में निबोलियों एवं पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। नीम की निबोलियों के सत का छिड़काव कीट नियंत्रण के लिए प्रभावी रहता है। प्यारे किसान बहन भाइयों, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के उपाय फसल की बुआई से पहले ही आरंभ हो जाते हैं। यदि हम गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करके खुला छोड़ते हैं, अपने क्षेत्र के अनुकूल रोग रोधी प्रजातियों का चयन करते हैं, बुवाई से पूर्व बीज व भूमि शोधन करते हैं, जैविक व हरी खादों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करते हैं, समुचित सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन करते हैं, अपनी फसल का नियमित निरीक्षण करते हैं, रोग व कीट नियंत्रण के जैविक व प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम कम लागत में स्वस्थ एवं शुद्ध फसल ले सकते हैं।
1: मित्रों, आशा है आपने डॉक्टर नेत्रपाल मलिक से अच्छी तरह से जान लिया होगा कि छोटे किसानों के लिए पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यवहारिक उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं कि आज के समय कृषि क्षेत्र में नई खोज क्या हो रही है। साथ ही आज के समय में कृषि क्षेत्र में नित नए आविष्कार हो रहे हैं, जिनमें से एक है स्वचालित सीड ड्रिल मशीन। ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये बीज को सही दूरी और सही गहराई पर बोकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही इसी के साथ जान लेते हैं मौसम की जानकारी। आगरा व आसपास के क्षेत्रों का मौसम का हाल क्या है। विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जहां सब्जियों के भावों में टमाटर 600 से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 800 से लेकर 900 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी के भाव है 2600 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं आलू गुणवत्ता के आधार पर 500 से लेकर 610 रुपए प्रति क्विंटल। तो मित्रों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के बाद हमें पता है आपको प्रतीक्षा है आपके मनोरंजन की। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कुमार शुक्ला के

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम्यलोक। अब अपने साथी लोकेंद्र पाठक को अनुमति दीजिए। राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब श्रमिक श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

मजदूर मंडल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो साथी छवि गर्ग का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब देखिए ना, जेठ का महीना चल रहा है और हमारी धरती तप रही है क्योंकि सूरज का ताप ही इतना ज्यादा है। ऐसे में साथियों, दिन के समय कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो घबराहट होना वाजिब है। और भाई, हमारे श्रमिक भाई तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, घर से बाहर निकलकर मेहनत करते ही हैं। आखिर रोजी रोटी का सवाल जो है। लेकिन हाँ, ऐसे गर्म मौसम में अगर पेड़ की छांव मिल जाए तो क्या ही कहने, सारी थकान पेड़ों से छन कर आती ठंडी हवा से उतर जाती है। सही कहा ना मैंने? तो मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रकृति के उस अनमोल खजाने की जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है, और वो है वनस्पति जगत, यानी पेड़ पौधे, घास, लताएं, फूल, फल और जंगल। दोस्तों, ये केवल धरती की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े सहायक भी हैं। हम जो सांस लेते हैं उसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन हमें पौधों से ही मिलती है, और इसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। साथियों, यही कारण है कि पेड़ों को धरती का फेफड़े भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी पर हरियाली का विशेष महत्व है क्योंकि जंगल वर्षा लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं और भूमिगत जल को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, यदि पेड़ ना हो तो नदियां सूखने लगेंगी, भूमि बंजर हो जाएगी और वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इसका एक बड़ा कारण तेजी से हो रही वनों की कटाई है। शहरों के विस्तार और उद्योगों के कारण हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि अनेक जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में पड़ गया है। और मित्रों, ये वनस्पतियां हमें भोजन, औषधि, लकड़ी, कपड़ा और बहुत सी काम में आने वाली जरूरी वस्तुएं देती है। अब देखिए ना, आयुर्वेद में उपयोग होने वाली अधिकतर जड़ी बूटियां पौधों से ही मिलती हैं। तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, केला और बहुत से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

0: पेड़ पौधे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को विशेष सम्मान दिया गया है। पीपल, बरगद, तुलसी जैसे पौधों की पूजा की जाती है। और ये केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का संदेश भी है। श्रोताओं, हमें समझना होगा कि यदि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, तो वनस्पतियों की रक्षा करना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूलों, गांव, शहरों में वृक्षारोपण अभियान चलाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि जब पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा। और दोस्तों, हमारी आज की वार्ता का विषय भी यही है, बढ़ता तापमान जिम्मेदार कौन। वार्ताकार है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।
1: होली में आग लगते ही पृथ्वी पर आग बरसना शुरू हो जाता है। मई और जून के माह में आते आते लोगों का जीना दुभर हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, अमीर लोग हिल स्टेशनों पर घूमने निकल जाते हैं, मगर गरीब बेचारे क्या करें, वह अपनी झोंपड़ी को छोड़कर आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। तमाम वैज्ञानिक इस गंभीर समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं, जिससे जनमानस को इससे कुछ राहत मिल सके। 16वीं 17वीं शताब्दी में निर्मित किले, मकबरे और खास महलों को देखकर ऐसा लगता है शायद मुगलों ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। धरती पर जीव जंतुओं व प्राणियों के जीवन यापन के लिए 16 डिग्री टेम्परेचर जरूरी समझा जाता है, परंतु आज जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे भूजल स्तर भी घटता जा रहा है। दुनिया भर में जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे धरती के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आसमान छूते इस तापमान के लिए जिम्मेदार हैं तेजी से बढ़ते कल कारखाने, जंगलों का विनाश और पर्यावरण के प्रति हमारी विशेष लापरवाही। औद्योगिकरण के कारण आज हमारे देश में ज्यादातर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। इन जीवाश्म ईंधन से कई तरह की नुकसानदायक गैसें बाहर निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैसें हमारे वायुमंडल में फैलकर उसको काफी नुकसान पहुंचाती हैं। फैक्ट्री से उत्पन्न इन गैसों को हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। यह गैसें पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। एसी, फ्रिज का उपयोग भी अब हमारे दैनिक जीवन में कुछ ज्यादा ही होने लगा है, जिनसे निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी ओजोन परत में बड़े बड़े छिद्र होते जा रहे हैं। सूर्य की किरणें अब सीधे पृथ्वी पर उन छेदों से होकर गुजरने लगी हैं। इस ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है, जो जनजीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। भविष्य में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत में यह छिद्र और बड़ा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि लोगों को धूप में निकलने पर स्किन कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। इसका मतलब है देश में चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी, परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हम भी चाहते थे कि हमारे देश का भी विकास हो। हमारे देश में भी विदेशों जैसी सड़कें, मॉल, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल हों। 21वीं सदी में कदम रखते ही हमारा यह हसरत भी पूरी हो गई, जिनके पीछे हम भाग रहे थे, मगर अफसोस हम अपने चैन और सुकून से हाथ धो बैठे। इस कार्य के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें हम आए दिन काटते जा रहे हैं। हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के चक्कर में जंगलों के जंगल साफ कर दिए, अब ढूंढने से भी जंगल नहीं मिलते हैं। पृथ्वी पर पेड़ों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं बन पा रहा है। ऑक्सीजन की पूर्ति ना होने पर प्राणियों का जीवन खतरे में आ रहा है। यदि हमें बढ़ते तापमान को रोकना है, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जिन गैसों से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उन संसाधनों का प्रयोग कम से कम करें। तापमान वृद्धि से अनेक हानियां हैं। अब प्रश्न यह

0: लगता है कि यदि धरती का तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है, तापमान अधिक बढ़ने पर हमारी धरती पर भीषण गर्मी पड़ने लगेगी, जिससे जगह जगह हमें पेड़ पौधों में आग लगने की घटनाएं सुनने को मिलेंगी। नदी नाले और जलाशय जल्द से जल्द सूख जाएंगे। पशु पक्षी जीव जंतु बिना पानी के मरने लगेंगे। हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े शहर समुद्र में डूब जाएंगे। पृथ्वी के तापमान की वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं? सर्वप्रथम हमें इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना होगा। हमें फ्रिज, एसी और हीटर कार्बन छोड़ने वाले उपकरणों का अपने दैनिक जीवन में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पानी को व्यर्थ में ना खर्च करें, प्रदूषण युक्त वाहनों का कम से कम प्रयोग करें और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खुले में शौच ना करें। प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना होगा। बिजली की जितनी संभव हो सके बचत करें। समय समय पर अपने वाहनों का प्रदूषण चेक कराते रहें। जीवाश्म ईंधन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल और कोयला के प्रयोग को रोका जा सकता है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन पर पूर्णता से रोक लगा देनी चाहिए। जैविक खाद की उपयोगिता बढ़ाई जाए। रासायनिक खाद को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा और बायोगैस के उपयोग की लोगों को में आदत डाली जाए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं तथा जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता से नियंत्रण लगे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता "बढ़ता तापमान जिम्मेदार कौन?" वार्ताकार थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। श्रोताओं, अब वक्त है आज के प्रश्न का। तो हमारा आज का प्रश्न है कि पौधों यानी कि प्लांट की हेल्थ के महत्व को समझते हुए आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। तब तक हम लेते हैं एक संगीतमय अंतराल और सुनते हैं ये गीत।

हाँ तो मित्रों, अब बारी है आपको आज के प्रश्न का उत्तर देने की। तो जवाब है कि आज यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और

आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को बढ़ावा दिया जाता है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अगला पड़ाव ज्ञान सागर है, जिसमें हम आपको आज लिए चलते हैं राजस्थान के एक सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ, और वो है उदयपुर। दोस्तों, यहाँ की शांत झीलें, भव्य महल, रंगीन बाजार और राजस्थानी संस्कृति पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। और हाँ, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है लेक पिछोला। इस झील में दिखता महलों का प्रतिबिंब मन को मोह लेता है। शाम के समय यहाँ नौका विहार का अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। झील के बीच में स्थित जग मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर की। ये महल राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला का अनोखा संगम है। श्रोताओं, उदयपुर केवल महलों और झीलों का शहर ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ के लोक नृत्य, कठपुतली कला और पारंपरिक संगीत पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध विरासत से परिचित कराते हैं। और अगर आप भोजन प्रेमी हैं, तो यहाँ की दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और मिर्ची बड़ा आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा मानसून पैलेस से सूर्यास्त का दृश्य इतना आकर्षक होता है कि लोग उसे कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह पाते। साथियों, अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो उदयपुर की यात्रा का आनंद लेना ना भूलें। अब चलते हैं साथियों आज पोषण टिप्स की ओर। और आज पोषण टिप्स में हम एक पौष्टिक नाश्ते की बात करेंगे, जो विशेषकर किशोरों, जवानों और शारीरिक श्रम करने वाले हमारे श्रमिक भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए 25 ग्राम देशी काले चने लेकर अच्छी तरह साफ कर लें। शाम के समय 125 ग्राम पानी में इन्हें भिगो दें और सुबह खाली पेट व्यायाम के बाद इन भीगे हुए चनों को खूब चबाकर खाएं। ऊपर से भीगे हुए चनों के पानी को या तो ऐसे ही या फिर 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये आपके शरीर को बल और स्फूर्ति देगा। एक बात और, आप चने की मात्रा को धीरे धीरे 25 ग्राम से बढ़ाकर 50 ग्राम तक कर सकते हैं। और हाँ, अगर भीगे चने खाने के बाद दूध पिया जाए तो बहुत लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर चने अंकुरित करके खाए जाएं तो और ज़्यादा फायदा होगा। ये मांसपेशियों को मजबूती देता है, शरीर शक्तिशाली बनता है और चर्म रोग यानी कि स्किन एलर्जी दूर होती है, क्योंकि विटामिन सी से भरा ये नाश्ता वजन और खून तो बढ़ाता ही है, साथ ही खून को साफ भी करता है, फेफड़े मजबूत करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हाँ, दिल की बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। तो साथियों, आप भी कीजिए चने का नाश्ता और बनाइए अपने शरीर को वज्र सा कठोर। और आइए अब सुनते हैं ये मधुर गीत।

अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने

0: का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest.
3: On the 14th and 15th of this month, the BRICS foreign ministers meeting is being held, which we are chairing. The Prime Minister's first stop will be the United Arab Emirates. Apart from that, the other four countries to be visited are Norway, Sweden, Italy and Netherlands.
2: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said, both sides are now working closely to further deepen the partnership. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security. He added that there will also be talks on increasing trade and investment between the two countries. On Mr. Modi's visit to Norway, Sweden, Italy and the Netherlands, Mr. Jaiswal said that these countries are also the centres for innovation and clean energy technologies, and discussions on these matters will be held during the Prime Minister's visit. Replying to question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pahalgam aimed at destroying state-sponsored terrorist infrastructure operating out of Pakistan and at its behest. Mr. Jaiswal said that as per India's neighbourhood first policy, New Delhi continues to support these countries with energy supplies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be it economic, technological or geopolitical. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 on next-gen labour reforms, driving industry growth and job creation in New Delhi, he said, the country currently has sufficient foreign exchange reserves to cover nearly 11 months of imports, placing the country in a very strong position globally. Speaking at the summit, Education Minister Dharmendra Pradhan stressed the need for a skill-based education system and said a strong credit system must be developed under the national education policy. Meanwhile, Niti Aayog member Rajiv Gauba said, in order to establish the structural foundation for India's future economy, the government has enhanced our connectivity.

0: connectivity via PM Gati Shakti, broadened highways and developed the Vande Bharat rail network. He added that the country must seize this moment to ensure India remains on this trajectory of bright and resilient growth. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The government today said those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed so that the future of students are not adversely impacted. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said that the agency will refund the amount of NEET UG examination fees to students. He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts. Department of School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar has said that NCERT and CBSE have jointly introduced a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for students from class 3 to 8. Speaking on the initiative, Mr. Kumar said the curriculum has already been rolled out. And in IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7:10 हुए हैं। विविध कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर नितिन कुमार की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है जैव विविधता।
2: हमारी धरती जीवन के रंग बिरंगे मनोहर रूपों से रची बसी है। भांति भांति के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं ने धरा को जीवंत और सृष्टि को सुंदर बनाया हुआ है। जैव विविधता के कारण पृथ्वी अनगिनत आश्चर्यों को समेटे हुए रचनात्मक और प्रगतिशील बनी हुई है। जैव विविधता अर्थात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न जंतुओं की भिन्नता और उनका पारिस्थितिक तंत्र से संबंधों का तुलनात्मक ज्ञान कराता है। जैव विविधता संपूर्ण भूमंडल पर समान रूप से वितरित नहीं है। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषतर विषुवत रेखा के समीप अधिक और ध्रुवों पर कम पाई जाती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणी समूहों एवं परितंत्र का एक ऐसा समन्वय है जिससे विभिन्न प्रजातियों के नामकरण, उत्पत्ति और परितंत्र भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चाहे रेगिस्तान हो या महासागर, पर्वत हो या पठार, जीवन सभी जगह अपने अनगिनत सुंदर रूपों में मुस्करा रहा है। पृथ्वी ने सभी जीवों को कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान की हैं जो उसे जीवों से विशिष्ट बनाकर पर्यावरण से सामंजस्य बनाते हुए क्रियाशील बनाती हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस पृथ्वी पर संपूर्णतः 30 लाख से 3 करोड़ तक प्रजातियां मौजूद हैं। इस जीव जगत में अधिक तादाद में सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10 करोड़ जीवाणु मौजूद होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद भी इनका पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान है। ये सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर भूमि को उर्वरा बनाते हुए धरा को अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त रखते हैं। यदि ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं, तो कूड़े कचरे के ढेर के कारण पृथ्वी पर जीवन की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी।

सही मायनों में वनों की विशेषता भी जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। ऊंचाई पर पाए जाने वाले बांज प्रजाति के पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि शंकुधारी वन इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वनों में उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियां भी वन्य जीवों की शरणगाह होती हैं। वास्तविक रूप में सभी जैव प्रजातियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन विविध जीवों और वनस्पतियों का अनुपात ही पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखता है। जिस क्षेत्र में वन्य जीवों, वनस्पतियों, कीटों और मानवों के बीच में संतुलन रहता है, वहां पर्यावरण संतुलन के लिए कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भारत एक विशिष्ट भूभाग और जलवायु भिन्नता के कारण जैव विविधता की समृद्धता के लिए एक अनुकूल देश है। विविधता संपन्न हमारे देश में अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों से लेकर बहुत कम वर्षा वाले रेगिस्तान भी हैं। हमारे देश में अत्यंत ठंडे और बहुत अधिक गर्म स्थानों के साथ साथ मैदान और समुद्रीय क्षेत्र भी हैं। यह सभी विभिन्नताएं जैव विविधता की दृष्टि से भारत को अनुकूल और समृद्ध बनाती हैं। इस कारण विविधता संपन्न राष्ट्रों में भारत की गिनती विश्व के सबसे अधिक 12 जैव विविधता संपन्न देशों में की जाती है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति में जैव विविधता का संरक्षण आदिकाल से ही धर्म के रूप में विद्यमान है। भगवान विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार आदि सभी जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में अपरिग्रह भी जीव जगत और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश प्रदान करती है। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में वृक्षों को काटना एक अपराध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जीवन के विविध रूपों में प्रकृति प्रेम को ही देखते थे। उनका कहना था, मैं केवल मानव जाति के बीच भाईचारे अथवा उसके साथ तादात्म्य की स्थापना नहीं करना चाहूंगा, बल्कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों सहित समस्त प्राणी जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए जीवन जितने रूपों में है सब मूलतः एक ही है। आज मानवीय गतिविधियों के चलते पर्यावरण और जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो गया है। असंतुलित विकास ही जैव विविधता का दुश्मन होता है। आज जमीन के प्रदूषण से जमीन के अंदर रहने वाले केंचुए, बैक्टीरिया और शैवालों की संख्या और गुणात्मकता दोनों घट गई है। आज वैश्विक कल्याण की भावना की बजाय निज हित की सोच ने मानव को प्रकृति का विरोधी बना दिया है। प्राकृतिक संपदा के अंधाधुंध दोहन ने प्राकृतिक परिवेश को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण जैव विविधता सिमटती जा रही है। आज केवल भारत में ही 450 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 150 से अधिक स्तनधारी और 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जीव जंतुओं की 47,667 प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक जैव विविधता के प्रति मानवीय समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 29 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया था, किंतु बाद में व्यवहारिक कारणों से इसे 22 मई को मनाने का निर्णय लिया गया। आज 22 मई 2018 का यह दिन जैव विविधता दिवस की 25वीं वर्षगांठ को मना रहा है। अतः इस विशेष उत्सव पर हम सबको यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के सभी जीवों के विकास का आधार एक दूसरे का रखरखाव एवं संरक्षण है।

0: वास्तव में जैव विविधता की समृद्धता ही प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित कर सकती है और पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों में मुस्कुराहट बिखेर सकती है।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर नितिन कुमार की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है जैव विविधता। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की खड़ी में संध्या के 7:18 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

विविधता कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की खड़ी में संध्या के 7:18 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी, पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर

0: काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। PAC और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
3: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
4: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई

0: इसमें हल्का बूंदाबांदी गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहाँ से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पुष्पा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जब हम इस स्टूडियो में बैठकर आपसे संवाद कर रहे हैं तो हमारे सामने केवल माइक्रोफोन नहीं है बल्कि देश की करोड़ों धड़कनें हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। आज का हमारा विषय मिट्टी की आन, पौधों की शान, विकसित भारत का नया अभियान कोई साधारण शीर्षक नहीं है बल्कि ये हमारे अस्तित्व का घोषणा पत्र है। साथियों, मिट्टी क्या है? क्या ये केवल भूवैज्ञानिक संरचना है? नहीं, मिट्टी वो आदि तत्व है जिसने मनुष्य को आकार दिया। ये वो उर्वरा है जिसने सभ्यताओं के आदि और अंत को अपने भीतर समेटा है। सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक हमारी पहचान इसी मिट्टी के रंग में रंगी है। लेकिन मिट्टी की ये आन अधूरी है यदि उसके शीर्ष पर हरियाली का मुकुट न हो। पौधे, वृक्ष और वनस्पतियां इस मिट्टी की अभिव्यक्ति हैं। आज जब हम भारत अपनी स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है तो हमें यह समझना होगा कि एक विकसित राष्ट्र केवल लोहे और कंक्रीट से नहीं बनता बल्कि वो अपनी मिट्टी की उर्वरता और अपने वनों की सघनता से पहचाना जाता है। आइए इस वैचारिक यात्रा में गहराई से उतरें।

श्रोतो, मिट्टी की आन का अर्थ हमारे लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। हमारी संस्कृति में मिट्टी शब्द स्वाभिमान का पर्याय है। हम कहते हैं मिट्टी में मिल जाना या फिर मिट्टी का मोल समझना। ये मिट्टी हमारे पूर्वजों का तप है और हमारे शहीदों का तर्पण है। जब मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लाखों गांवों से कलशों में मिट्टी एकत्रित की गई तो वो केवल धूल का संग्रह नहीं थे, वो भारत की सामूहिक आत्मा का एकीकरण था। वो इस बात का प्रतीक था कि कश्मीर की बर्फीली मिट्टी और कन्याकुमारी की तटीय रेत दोनों का गौरव एक समान है। परंतु श्रोताओं, आज इस आन पर संकट के बादल हैं। रासायनिक खादों के अनियंत्रित उपयोग ने धरती माता की कोख को बीमार कर दिया है। मिट्टी का कार्बन स्तर गिर रहा है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं और मरुस्थलीकरण का खतरा पड़ रहा है। यदि मिट्टी अपनी आन खो देगी तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा और अपनी सेहत कैसे बचाएंगे? विकसित भारत का पहला चरण है स्वस्थ मुद्रा। हमें प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटना होगा। मिट्टी को फिर से जैविक तत्वों से समृद्ध करना होगा ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए विषमुक्त अन्न उपजा सके। याद रखिए श्रोताओं, मिट्टी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा इतिहास और भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: तो श्रोताओ, अब हम विचार करते हैं पौधों की शान पर। एक बीज का अंकुरित होना प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। पौधे इस धरा के फेफड़े हैं जो हमारे द्वारा त्यागी गई विषैली हवा को अमृत रूपी ऑक्सीजन में बदलते हैं। भारत की शान हमेशा से उनके वनों में रही है। हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम इन्हीं उपवनों में थे, जहां वे प्रकृति के साथ एकात्म होकर ज्ञान की खोज करते थे। हमारे यहां वृक्षायुर्वेद जैसा शास्त्र लिखा गया जो पौधों के रोगों और उनके उपचार की बात करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमें वैश्विक स्तर पर यह संदेश देना है कि पौधों की रक्षा करना केवल पर्यावरण प्रेम नहीं है, बल्कि दोस्तों मानव जाति का आत्मरक्षा तंत्र है। पौधों की शान तब बढ़ती है जब हम जैव विविधता का सम्मान करते हैं। केवल सजावटी पौधे लगाना पर्याप्त नहीं होता, हमें अपने स्थानीय वृक्षों जैसे बरगद, पीपल, नीम और महुआ को सहेजना होगा। ये वृक्ष मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को आश्रय देते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पौधे ही हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। यदि हम पौधों की शान बढ़ाएंगे तो मानसून समय पर आएगा, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं कम होंगी और हमारा देश प्राकृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।
2: नफरत की लाट

श्रोताओं, प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत 2047 का आह्वान किया तो उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। इस अभियान का मूल मंत्र है विरासत का सम्मान और विकास का संकल्प। हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी ये माटी और वनस्पति ही है। नया अभियान हमें यह सिखाता है कि आर्थिक प्रगति का अर्थ पर्यावरण का विनाश नहीं होना चाहिए। हम सौर ऊर्जा में विश्व गुरु बन रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन सबके केंद्र में ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। मेरी माटी मेरा देश के तहत निर्मित अमृत वाटिका हमें ये याद दिलाती है कि जब हम मिलकर एक पौधा लगाते हैं तो हम भारत की एकता को सींचते हैं। विकसित भारत का अर्थ है एक राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक को शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन मिले। और ये तभी संभव है जब हर शहर और हर गांव अपनी ग्रीन बेल्ट विकसित करे। आज के युवाओं को जो तकनीक के उस्ताद हैं, उन्हें एग्रीटेक और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके पौधों की नई प्रजातियों और मृदा संरक्षण के तकनीकों पर काम करना चाहिए। ये अभियान केवल सरकारी फाइलों का हिस्सा नहीं, ये आपकी और हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। चुनौतियां कठिन है श्रोताओं, बढ़ता तापमान, कीटों के नए प्रकार के हमले और घटती कृषि भूमि हमारे लिए खतरे की घंटी है। पादप स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बुरा असर सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि फसलें बीमार होंगी तो किसान कर्ज के बोझ तले दबेगा और राष्ट्र का विकास थमेगा। लेकिन समाधान हमारी इच्छा शक्ति में है। हमें एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाना होगा, हमें मिट्टी के परीक्षण को एक आदत बनाना होगा। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर हमें वृक्षारोपण को वृक्ष पालन में बदलना होगा। केवल फोटो खिंचवाने के लिए पौधा लगाना काफी नहीं है, उस पौधे के वट वृक्ष बनने तक की यात्रा में हमें सहभागी बनना होगा। जल संचयन और मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा। समय की अपनी सीमा है और आज का ये संवाद अब समापन की ओर है, लेकिन अंत नहीं है, शुरुआत है। मिट्टी की आर और पौधों की शान का ये नारा आपके घरों की बालकनी से लेकर देश के विशाल खेतों तक गूंजना चाहिए। जब आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद बाहर निकलें तो धरती को एक अलग नजर से देखें, उस मिट्टी में छिपी असीम संभावनाओं को महसूस करें और उन पौधों को देखें जो बिना कुछ कहे हमें जीवन दे रहे हैं। विकसित भारत का सपना केवल सड़कों और पुलों से पूरा नहीं होगा, वो पूरा होगा जब भारत का हर कोना हरा भरा होगा और हर नागरिक अपनी माटी के प्रति वफादार होगा। आइए आज हम सब मिलकर ये कसम खाएं कि हम अपनी माटी को बंजर नहीं होने देंगे और अपनी हरियाली की शान पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि यदि माटी सुरक्षित है और पौधा स्वस्थ है तो मेरा भारत अजेय है।

0: और श्रोता, इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब सुनते हैं देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं

अब लौट चलें। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और सोनू निगम की आवाजों में। समीर की रचना को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। बॉर्डर फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों के स्वर में। गीत रचना जावेद अख्तर की, संगीत अनु मलिक का है।

0: डॉक्टर शर्मा के हमराह कानून साज असम्बली के चार अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजरा आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में नौ मुंतखबशुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईए डीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में दो ग्रुपों में बच गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेंबरान असेंबली को हिदायत दी है कि वो टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी एमएलए ने पार्टी व्हिप की खिलाफवर्जी की तो उसे पार्टी से बरतरफी का सामना करना पड़ेगा। इधर 30 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलुमणि को एआईए डीएमके की कानूनसाज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि यह ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। हुकूमत को अम्मा मक्कल मोनित्र कसगम के वाहिद एमएलए एस कामराज की हिमायत भी हासिल है, जिन्हें आज उनकी पार्टी ने बरतरफ कर दिया था। वजीर आला विजय कल से हिमायत करने वाली पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि अक्सरियत साबित करने की आजमाइश से कबल अपनी हिमायत को मजबूत कर सकें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों की जदीदकारी और इसकी खातिर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की हुकूमती मदद हासिल करने के लिए एक खाका तैयार करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालतों के बुनियादी ढांचों से मुतालिक यह मुशावरती कमेटी हुकूमत की जानिब से मुसलसल माली मदद के जरिए अदालतों में बुनियादी ढांचे के हवाले से कमियों का इजाला करेगी। अवामी कामकाज से मुतालिक मरकजी महकमे के डायरेक्टर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी पैनल के मेंबरान होंगे। कमेटी को इस साल 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सानियाल को अपनी तफसीली मालूमात और रकम की जरूरियात दाखिल करने का काम दिया गया है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं ताकि साइबर नौइयत की इक्तसादी जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मुआशी निजाम में मूल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को खत्म करने के सिलसिले में मूल खाते भी अब एक बड़ा चैलेंज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वुजराए खारजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वजराए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे।
1: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फरामी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुत्तला किया।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है।

0: कैसे मजबूत किया जाएगा?
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, खा वो रुकावटें इकतसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इकतसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और 1 डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की

जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: manufactured in India. Overall, I feel under Prime Minister Modi's leadership, the toy industry is no longer just a consumer goods segment, but it has become a strategic sector, which is linked to manufacturing, culture, creativity, skilling, child development, and obviously exports. This is what I feel is a situation where okay. India is standing at the threshold of not just being a large market for toys, but we are now also globally recognized for safe, innovative, culturally rooted, and high quality toy manufacturing led by micro and small enterprises.
1: Okay, that's quite an introduction as to what triggered the transformation. What were the key policy measures, Vinod, that made the imports fall by up to 52%, which is quite a massive drop? So what were the measures taken that made this happen?
0: Almost 6-7 years back, if you look at, we imported a large percentage of our toys, especially low-cost plastic and electronic toys and all that. And majority of our imports were largely dominated by Chinese manufacturing ecosystems. Whereas Indian toy manufacturers struggled to compete on pricing, scale, and so on and so forth. This was primarily linked to, I'd say, six things. So you had the mandatory BIS quality standards for toys that came in. We had the higher custom duties. We had stricter compliance and testing requirements for imported toys. And we also brought in the anti-dumping and quality control measures. Now, these four, along with the vocal for local push and make in India push, which sort of saw enhanced manufacturing capacity locally for toys, and the consumer sentiment, which basically pushed against using imported toys, which was so easy, so cheap, and it was almost like majority of the toys were dumped into India.
1: Vinod, we also have with us at this point of time a toy maker, Chitari. He joins us from Maharashtra. Let's hear what he has to say about toy making and what transformation that has come into the toy industry. Chitari, aapka bahut swagat hai Money Talks mein.
2: Thank you, sir.
1: आप बताइए कि आपकी कहानी क्या है?
2: मेरा नाम अमित चितारी है. मैं सावंतवाड़ी से आर्टिजन करके हूँ. और हम लोग एक, मेरी ये फोर्थ जनरेशन है. अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में.
1: ओके.
2: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है. गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है.
1: ओके. तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए?
2: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है. लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना, उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी.
1: ओके. और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है?
2: बिल्कुल फायदा हुआ है. उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह खरीद लिए हैं, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा.
1: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के? वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ है. क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में?
2: बिल्कुल सर, आ गई है. क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना, अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं.
1: ओके.
2: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना, अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है.
1: तो आप क्या, आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं?
2: हाँ सर, होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं.
1: चितारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू सर.
1: सो विनोद, कमिंग बैक टू यू आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट चितारी सेड टू अस दैट ही इज बीन इन दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 4 decades वेयर चाइना हैज डोमिनेटेड द ग्लोबल टॉय मार्केट. नाउ हाउ इज इंडिया नाउ कम्पीटिंग, लाइक पीपल लाइक चितारी कम्पीटिंग विद देम? And what is our edge over Chinese manufacturers?
0: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segment.

0: मन धन।
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आशुतोष जी, जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
2: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि ये पूरा होगा।
1: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक, जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
2: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
2: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों

0: हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है। और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही तय की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी, तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: परीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो ये 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
0: दो तीन बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको? और जिससे कि आपने अभी जैसे बताया
0: बिल्कुल
1: कि
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सारे कार्य
0: जी
1: अलग अलग
0: उसमें
1: तरीके से चलते रहते थे, लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे इसका, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, मुझे जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब।

0: किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओज हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी। और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं, जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है, तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है, उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6 से 9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
2: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास, जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज इसके की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांवों का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल, तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
2: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गाँव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
1: जी,
2: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा, तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी की खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
2: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा

0: आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।
3: नमस्कार।
4: मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओ, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात IPL की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। IPL न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में IPL के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
5: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह IPL ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस IPL की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में BCCI ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ IPL के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली IPL व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। IPL न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, IPL की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी IPL की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल IPL की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल IPL की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी 4th नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से IPL ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ IPL का पहला सीजन

0: खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर पांच पांच बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं, और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए डीएलएफ समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए, और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है, और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है, जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना, और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं, फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे, और स्विमिंग के। हम लोग 8 लोग हैं, तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं, और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं, बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस

0: पे काम किया जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
1: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है, उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पे है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है। ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
0: बड़ी सरल प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो कोचेज हैं आठों खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा, एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड रहता है। मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा के जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं। काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं, अपने घर से बच्चे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है, तो वो सीधा आ सकता है। तो ऐसी कोई वो उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है। तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है। तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन-किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, तो उसमें क्या विशेष सुविधा है? क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ। लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा। अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में। तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजना है। इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वही उसी का भाग है। जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी।

0: बिल्कुल कराई जाती है, जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके सिक्स प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से चार तीरंदाजी में बच्चे हैं और दो कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पे।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: अब इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है।
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी उषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि उतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बॉलीवुड

को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें में 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने

11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्काराज का यह सातवां ग्रैंड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो-खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से दो को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो-खो और योगासन में से दो को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला वन रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपेश सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉडरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है।
सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते

0: नजर आएंगी। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है, कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

एक राष्ट्र है, हम हैं एक, ज्यों गुलशन में फूल अनेक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दस बजकर 28 मिनट हुए हैं। प्यार हो, दुलार हो, बाहर ही बाहर हो, सीमित और छोटा सा जिसका परिवार हो, बच्चे इस देश की आंखें हैं और शिक्षा उन आंखों की रोशनी। बच्चे पढ़ते हैं यानी आगे बढ़ते हैं।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेंद्र सिंह का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध कल्याण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने हुए हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered

हमारी सांध्यकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ कल सवेरे 5:53 पर इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।